एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि के तदनुसार 26 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

समवेत स्वर में अभी आप सुन रहे थे देशगान। लीजिए अब सुनिए हरिओम शरण नंदिनी शरण की आवाजों में ये भजन। शब्द हरिओम शरण के हैं और संगीत है मुरली मनोहर स्वरूप का।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अनूप जलोटा को।

0: घनश्याम वासवानी और साथियों की गाई इस पारंपरिक रचना के साथ ही हमारा आज का आस्था के स्वर कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: आस्था के स्वर।

0: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन मधु विद्या। आलेख भगवान प्रसाद गुप्ता का है और वाचक स्वर है अनिल मुंशी का।
1: हमारी वसुंधरा पर स्वर्ग का अनुभव तभी लिया जा सकता है जब हर मनुष्य समूचे संसार के सुख शांति आनंद व कल्याण की मंगल कामना करे और ऐसी भावना का प्रसार हमेशा संसार के सभी मनुष्यों में व्याप्त हो। न तो केवल चेतन वरन जड़ पदार्थों पर भी इस सुंदर भावना का गहरा एवं सार्थक प्रभाव होगा। आइए इस बात को एक कथा के माध्यम से समझा जाए। उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य को एक बार जब प्यास लगने पर जल प्रस्तुत किया गया तो उन्हें वो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट प्रतीत हुआ। उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि ये जल कहाँ से लाया गया एवं इसमें क्या मिलाया गया है, इसका कारण शीघ्र पता लगाकर बताया जाए। राज्य के समस्त कर्मचारी इस बात का पता लगाने में जुट गए। कुछ ही समय में मालूम हुआ कि वो जल महल की पनिहारिन की नव पुत्रवधु ने भरा था। उसे तत्काल महाराज विक्रमादित्य के समक्ष प्रस्तुत किया गया। महाराज के पूछने पर कि जल में उसने कौन सी सुगंधित वस्तु मिलाई है, भय से कंपित उस नवयौवना ने बताया कि उसने जल में कोई सुगंधित वस्तु या द्रव्य नहीं मिलाया है, अपितु ये जल वो अपने मायके के पास की बावड़ी से विशेष तौर पर महाराज के लिए लाई है। इस तथ्य की जांच के लिए राजन ने अपने सैनिकों को उस स्थान पर भेजा। उन्होंने लौटकर पनिहारिन के कथन को सत्य बतलाया। महाराज विक्रमादित्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने स्वयं उस बावड़ी तक जाने का निश्चय किया। जब वे अपने मंत्रियों के साथ उस बावड़ी के समीप पहुंचे तो वे ये देखते हैं कि बावड़ी के समीप वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी सन्यासी ध्यान में मग्न हैं और उनके आसपास का समस्त वातावरण शांत प्रफुल्लित एवं आनंदमय है। महाराज विक्रमादित्य ने उन्हें प्रणाम किया। तपस्वी ने नेत्र खोले और कहा, हे राजन, मैं जानता हूं कि तुम किस जिज्ञासा के कारण यहां तक आए हो। इस बावड़ी के जल में कोई द्रव्य या सुगंधित वस्तु नहीं मिलाई गई है, अपितु ये मेरी मधुविद्या का प्रताप है। राजा ने प्रश्न किया, ये मधुविद्या क्या है, कृपा कर बताएं। सन्यासी ने उत्तर दिया, राजन, मैं इस वृक्ष के नीचे अपनी साधना में निमग्न तो रहता ही हूँ, साथ ही सदैव ये कामना भी करता रहता हूँ कि संसार के समस्त प्राणियों का जीवन खुशहाल हो, वे सुखी हों और आनंद से परिपूर्ण हों, उन्हें कभी कोई दुख ना हो। मेरे साथ कोई यदि बुरा बर्ताव करता है तो भी मैं सदैव उसके कल्याण के लिए मंगल कामना ही करता हूँ। समस्त प्राणियों के शुभ

0: मंगल एवं कल्याण की सतत भावना से ही आसपास का समस्त क्षेत्र माधुर्य से परिपूर्ण, शांत और आनंदमय है। इस बावड़ी का जल भी इसी कारण से ऐसा स्वादिष्ट और मीठा है। ये तपस्वी थे परम योगी गुरु गोरखनाथ, जिनकी मधुर वाणी से अमृत वचन ग्रहण कर महाराज विक्रमादित्य कृतार्थ हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में इस मधु विद्या को धारण करने का संकल्प किया। ऐसी जनकल्याण की भावना व समस्त प्राणियों के आनंद की कामना यदि हम लोग करें तो निश्चित ही संसार का परिदृश्य ही बदल जाएगा। आनंद और माधुर्य का वातावरण चहुं ओर दृष्टिगोचर होगा। इस मधु विद्या को जिस किसी ने भी अपने जीवन में धारण किया, न केवल उस व्यक्ति का जीवन वरन उसके संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों, परिवार और समाज का वातावरण आनंद तथा उल्लासमय होगा। चेतन के साथ जड़ पदार्थ भी माधुर्य से परिपूर्ण हो, इसके लिए मधु विद्या को अपने जीवन में उतारें। साथ ही सबके शुभ, आनंद, मंगल एवं कल्याण का शुद्ध भाव रखें तो वसुंधरा पर स्वर्ग का अनुभव अवश्य होगा।
1: मधु विद्या, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे चिंतन आकाशवाणी खंडवा से। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, गायक स्वर रविंद्र साठे का है।

श्री राम की बारात के स्वागत में तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन पांच वाद्य यंत्रों से वेद ध्वनि, वंद्य ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि तथा हुल ध्वनि, ये पंच ध्वनि हो रही है और उसके साथ गूंज रहा है मंगल गान। ब्रह्मा समेत श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणों का वेश धारण कर ये समारोह निहार रहे हैं। समारोह की सुंदरता तथा गरिमा की उपमा के अभाव में कवि इतना ही कह पाते हैं कि इनके समान यही हैं। समाधियों के मिलन को देखकर ब्रह्मा का कहना है कि जब से उन्होंने जगत की रचना की, बहुत विवाह देखे और सुने, किंतु सभी प्रकार से समान, साज समाज और समता वाले समधि आज ही देखने को मिले।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि चर्चा। आज का विषय है जलवायु परिवर्तन का कृषि फसलों पर प्रभाव। वाचक स्वर अखिलेश बरोले का है।
1: आज की कृषि चर्चा में हम आपको जानकारी दिवांगा जलवायु परिवर्तन को कृषि पर प्रभाव कि पिछला कुछ साल नसी वातावरण में तापमान हर साल बढ़ी रोज, मानसून भी अनियमित हुई रोज, ये सब असर हुई रोज जलवायु परिवर्तन सी। इना समय जलवायु परिवर्तन को कृषि फसल न पर प्रभाव भी पड़ी रोज। न कृषि फसल न पर प्रभाव एक चुनौती का समान छे जी विशेष रूप से भारत जैसा कृषि प्रधान देश पर गहरो असर न प्रभाव भी डाली रहा। जलवायु परिवर्तन को प्रभाव का कम करना न रोकना कले शासन, कृषि वैज्ञानिक, किसान भाई और समाज न गाँव का प्रत्येक भाई सभी नख मिलकर इन्हें दिशा में प्रयास करनु पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन, औद्योगिकीकरण न बढ़ता वाहन की संख्या में लगातार वृद्धि हुई रही जेका परिणाम स्वरूप बढ़ती ग्रीन हाउस गैस न का उत्सर्जन सी तापमान भी बढ़ी रोज। जलवायु परिवर्तन सी पूरा विश्व चिंतित छे। चिंता को विषय एका कारण छे कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश छे न भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला खेती छे। किसान भाई कई पीढ़ी नसी खेती कारण मौसमी बरसात पर निर्भर छे। बदलता मौसम का कारण फसल उत्पादन में उतार चढ़ाव को कारण न अनियमित बरसात, ज्यादा बरसात, नमी, फसल न रोग, न कीट न कुप्रकोप, बाढ़, सूखो, न ओलावृष्टि, ये सब मुख्य रूप से मौसम परिवर्तन का कारण हुई जेका हम जलवायु परिवर्तन काम है। जमीन में पानी को स्तर भी गिरी रोज, पानी को स्तर बहुत ज्यादा नीचे जाई रोज, जल न का स्रोत न जल का भंडार भी अब धीरे धीरे कम ही रहा। जनसंख्या का कारण अनाज की मांग भी बढ़ी रही न साथ ही जो प्राकृतिक संसाधन न का दोहन को दबाव भी बढ़तो जाई रोज जेका सी पर्यावरण में परिवर्तन होना लगी जाए। न भाई बहनों होनी पर्यावरण में परिवर्तन को सीधो प्रभाव खेती पर पड़े क्योंकि तापमान बरसात में बदलाव आने से मिट्टी की क्षमता रोग कीट फैली जाए न बीमारी न अपना सामान्य तरीका से अलग अलग रूप से फसल न पर फैलाए। बढ़ता प्रदूषण न प्राकृतिक संसाधन न का ज्यादा उपयोग करने से पर्यावरण में जी बदलाव आई राज ओको खेती न फसल न पर ज्यादा प्रभाव पड़ी रोज। बरसात को मौसम जी पहला लंबो चलतो थो अब उतनी ज बरसात जी हुई रही वो बरसात अब समय का साथ हुई रही पर आशा बदलाव सी टुकड़ा टुकड़ा न हुई रही। तो आशा बदलाव सी किसान भाई नख सचेत रहने की आवश्यकता छे न समय समय पर मौसम की जानकारी रखनो भी अब बहुत ज़्यादा जरूरी छे। भाई बहनोनी गुणवत्ता पर भी प्राकृतिक संतुलन को नकारात्मक प्रभाव पड़े। अनाज में पोषक तत्व न प्रोटीन की कमी भी हुई सके जेका कारण संतुलित भोजन नहीं मिलने पर मानव का स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सके। भारत जैसा कृषि प्रधान देश में खेती की माटी की संरचना न खेत की माटी की उत्पादकता महत्वपूर्ण है। फसल का अच्छा न गुणवत्तापूर्ण उत्पादन का लेन ये जरूरी भी छे। तापमान बदलने से खेत की माटी की नमी न कार्य क्षमता भी प्रभावित होए। माटी में लवणता बढ़ेगा न जैव विविधता घटती जाएगा। पैविनोहनी तापमान बढ़ने से माटी में उपस्थित सूक्ष्म जीव नका द्वारा कार्बन की अवघटन की क्रिया में भी वृद्धि होएगा। आशा होना सी खेत की माटी में मौजूद कार्बन

0: न पोषक तत्व न की बहुत जल्दी हानि हुई सकेगा, न मिट्टी की उत्पादकता पर भी असर पड़ेगा। भाई बहनों, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव का असर का समय रहता हुआ कम करने का उपाय न पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ तक उपाय न की बात आवे तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव का कम करने का लेन खेत में जल प्रबंधन, जैविक न मिश्रित खेती, फसल उत्पादन में नमी, नई नई तकनीक न को विकास, फसल चक्र का अपनाणु, मौसम आधारित किस्म को चयन करनो, पशु प्रबंधन, चारागाह की उपलब्धता, ड्रिप सिंचाई, मृदा परीक्षण जैसा उपाय न का हम अपने कर जलवायु परिवर्तन का ही उपाय करांगा तो हम प्राकृतिक संतुलन में भी ये सब सहायक होएगा और साथ ही हमारी खेत की माटी की उत्पादकता भी बनी रहेगा। आज की कृषि चर्चा में आपसी ईज कहनो छे।
1: जलवायु परिवर्तन का कृषि फसलों पर प्रभाव, इस विषय पर अभी आपने सुनी आज की कृषि चर्चा। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। श्रोताओं, ये समय है कार्यक्रम विवरण का।

अब से थोड़ी देर बाद 7 बजे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिएगा भेंटवार्ता अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर। जानकारी देंगे समाज सेवी विजय सनावा और इनसे बातचीत आप सुनेंगे मेरे साथ। 7:20 पर सुनहरे पल, 8:15 पर और सुबह 10:40 पर निमाड़ी लोकगीत आपके मीत। ये गीत कार्यक्रम का प्रसारण समय सुबह 8:30 पर सुबह 9 बजे से और दिन में 11 बजे से अनुप्रसारित किए जाएंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जिले की चिट्ठी सुबह 10 बजे आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। 10:05 पर कार्यक्रम नारी जगत, इसमें भेंटवार्ता का विषय है योग एवं ध्यान का भावनात्मक और मानसिक सुदृढ़ता में महत्व। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सुगंधा वर्मा भटनागर और इनसे बातचीत की है मोना दफ्तरी ने।

प्रायोजित कार्यक्रम NCERT शाम 5:30 पर, कार्यक्रम युववाणी शाम 6:00। इसमें आज का क्रम है शीर्षक संगीत। फिल्म संगीत का लुत्फ उठाइएगा शाम 6:30 पर।

शाम 7:21 पर कार्यक्रम खेती गृहस्थी, स्पॉटलाइट रात 9:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है आज की ताजा खबर।
1: आज की ताजा खबर।

राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को 5 वर्षीय आयु तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओपी जुगतावत ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के संबंध में जन जागरूकता के उद्देश्य से 27 जून को प्रातः 9:30 से जन जागरूकता रैली निकाली जाएगी।

जिले में अलनिनो के प्रभाव के कारण मानसून बारिश की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी गई है कि वे कृषि वैज्ञानिकों की सलाह अनुसार ही फसल लगाएं। गुरुवार को आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की और उन्हें समझाइश दी कि कम वर्षा की स्थिति में कृषि वैज्ञानिकों की सलाह अनुसार ही फसल लगाएं। मुहर्रम पर्व को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर आंशिक बदलाव किए हैं। ट्रैफिक टीआई परिहार ने बताया, शुक्रवार को ताजिए शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेंगे। ताजिए भ्रमण काल से लेकर रात 12 बजे तक भारी वाहन शहर में प्रतिबंधित रहेंगे।

शासकीय आईटीआई में 2 जुलाई को रोजगार स्वरोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। ये मेला सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगेगा। इसमें प्रदेश की विभिन्न कंपनियां तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्रों में लगभग 200 बेरोजगार युवक युवतियों की निजी क्षेत्र में भर्ती करेगी।

और अब खेल समाचार। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी तीसरी जीत दर्ज की। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर में 136 रन का चुनौतीपूर्ण टोटल बनाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने इसे बड़ी ही आसानी से 16 ओवर और 5 गेंदों में हासिल कर लिया। मौसम, ज़िले में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन इसकी चाल बेहद सुस्त और अनिश्चित बनी हुई है। लगातार दूसरे दिन गुरुवार को शहर सहित ज़िले में बारिश हुई, कहीं तेज़ तो कहीं रिमझिम।

0: बारिश हुई, करीब एक घंटे में 25 मिलीमीटर बारिश हुई। और अब नज़र डालते हैं तापमान पर। कल दिन का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस, वहीं रात का न्यूनतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस रहा। ये थी आज की ताज़ा खबर, संकलन फैयाज खान का।
1: आज की ताजा खबर।
0: अभी आप सुन रहे थे आज की ताजा खबर। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है भेंटवार्ता अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर। जानकारी दे रहे हैं समाज सेवी विजय सनावा। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नाज़मा परवीन। श्रोताओं, आज है 26 जून। आज का ये दिन संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन पूरी दुनिया में इस संकल्प के साथ मनाया जाता है कि हम अपने समाज को नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव से मुक्त कराएंगे। श्रोताओं, नशे की लत को छुड़ाने में हमारी सरकारी और निजी संस्थाएं और समाज सुधार केंद्रों की अहम भूमिका होती है। बात की जाए इन संस्थाओं और केंद्रों पर सेवाएं देने वाले कार्यकर्ताओं की, तो इनका अनुभव बहुत ही गहरा होता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आज हमारे साथ हैं दादाजी नशा मुक्ति केंद्र में वर्षों तक अपनी सेवाएं देने वाले युवा समाज सेवक, सलाहकार और कार्यकर्ता विजय सनावत जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार नज़मा जी, आप सभी को, सभी श्रोताओं को विजय सनावा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार और सभी को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस की 26 जून की बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं, विशेषकर उन साथियों जो लोग नशे से दूर होकर जीवन यापन कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने परिचय दिया है, दादाजी नशा मुक्ति केंद्र में हम लोगों ने कई वर्षों तक सेवाएं दी है। वहां पे काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक जो सपोर्ट मिलता है वो सपोर्टर के रूप में हम लोगों ने काम किया है। लोगों को घर पहुंच तक सुविधाएं दी है और कई लोगों को देखा है कि वो लोग नशा छोड़ने के बाद आज जो है सुखी और सफल स्वस्थ जीवन यापन कर रहे हैं।
0: जी, आप इस क्षेत्र में कब से काम कर रहे हैं? इस काम से आपका जो जुड़ाव है वो कैसे हुआ?
2: बिल्कुल नज़मा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं जहां तक बताऊं कि सन 2010 से जब हमारे खंडवा जिले में नशा मुक्ति केंद्र, दादाजी नशा मुक्ति केंद्र खुला था
0: जी,
2: तो मुझे वॉलंटियर के तौर पे वहां पे काम करने का अवसर मिला
0: जी।
2: जब हमने देखा कि वाकई में जो पीड़ित लोग हैं, पूरा परिवार उनके कारण प्रभावित होता है और ये सेवा कार्य बहुत अच्छा कार्य होता है, तो इसमें आगे बढ़कर, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट था, तो मैंने काउंसलिंग की सर्टिफिकेट्स, ट्रेनिंग्स वगैरह लिए, अपने हुनर को बढ़ाया, कौशल को बढ़ाया और काउंसलर के तौर पे दादाजी नशा मुक्ति केंद्र पर कई वर्षों सेवाएं दी और आज भी मैं एक समाज सेवी के रूप में लोगों तक पहुंचता हूं और लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं।
0: जी, काफी सराहनीय कार्य है आपका। और अब बताइए विजय सनावा जी, की जो ये नशा है वो होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है?
2: बहुत अच्छी बात करी मैडम आपने। नशा जो है वो, कई लोग नशा मतलब सब्सटेंस मतलब पदार्थों का नशा समझते हैं, वो तो नशा होता ही है, जैसे कि शराब, तंबाकू या नशीली दवाएं, चरस, गांजा, अफीम। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि कई ऐसे ऐसे हमारे व्यवहार होते हैं या कई हमारी ऐसी आदतें होती हैं, हम बोलते हैं सामान्यता कि अति सर्वत्र वर्जते, जब अति हो जाती है तो वो नशे का रूप ले लेती है। जैसे हम लोग देखें आज के जमाने में सोशल मीडिया का जो है अत्यधिक उपयोग हो रहा है, कई लोग उसके एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो बगैर मोबाइल के भोजन नहीं करते हैं
0: जी।
2: गेमिंग की एक ऐसी लत लग जाती है कि व्यक्ति अपना काम छोड़ के, अपनी स्टडी पढ़ाई छोड़ के और वो गेमिंग के चक्कर में डूबा होता है। तो ऐसी सारी जो लतें होती हैं जिनको अब आदतें बोलते हैं, उसको भी हम लोग नशे में गिनती करते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस

0: के बारे में बात कर रहे हैं,
1: जी
0: यहाँ पे हम लोग सब्सटेंस यूज के बारे में बात करेंगे। तो शराब, तंबाकू, नशीली दवाएं या अन्य ऐसे उत्पाद जिनका सेवन किया जाता है और व्यक्ति उससे मानसिक और शारीरिक जो है वो विकास अवरुद्ध करता है और अस्वस्थता की ओर आगे बढ़ता है, इसे नशा कहते हैं।
1: आप बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ की जो लत
0: जी
1: और उसका आदि होना नशा होता है, तो व्यक्ति की ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करता है?
0: बिल्कुल, आपने एक अच्छी बात करी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को हम ऐसी बात करें कि सबसे पहले तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जैसे कि व्यक्ति अवसाद डिप्रेशन में चले जाता है,
1: जी
0: बेवजह की चिंताएं होती है जिसके बारे में उसको सोचना नहीं चाहिए,
1: अच्छा
0: वो बहुत ज्यादा डीप में उन्हीं चीजों पे उन्हीं विचारों में खो जाता है, मानसिक विकार उससे उत्पन्न होते हैं। उसके अलावा समाज में उसकी प्रतिष्ठा कम होने लगती है, जब उसका सामाजिक व्यवहार कम होगा,
1: जी
0: जब वो परिवार में लोगों से बात नहीं करेगा, तो पारिवारिक समस्याएं, कलह, तनाव, हिंसा और दुर्घटनाओं का शिकार भी होता है। उसकी उत्पादकता, जो व्यक्ति की अपनी प्रोडक्टिविटी होती है, अपने कार्य करने की क्षमता होती है,
1: जी
0: वो भी उसकी कहीं ना कहीं घटती है।
1: जी
0: तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो मादक पदार्थों के सेवन से उनके परिवार और समाज में जो है वो ख्याति कम होती है और दुष्प्रभाव होता है।
1: जी और जैसे कि यदि कोई व्यक्ति नशे की लत में है, तो
0: हाँ,
1: शुरू के उसके क्या लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर परिवार वाले ये पहचान सके?
0: ये जो है ये काफी मतलब महत्वपूर्ण बिंदु है अपनी चर्चा का।
1: जी
0: जैसे कि व्यक्ति की जो दिनचर्या है वो थोड़ी सी अनियमित हो जाती है, वो
1: जी
0: परिवार के लोगों के साथ या अपने साथियों के साथ में समय कम बिताता है, अन्य जगह पे जहाँ पे वो नशा करने की उसको सुविधा होती है वहां पे समय ज्यादा देता है, घर पे थोड़ा देरी से आना, अनियमित दिनचर्या का होना, आहार कम लेना, अकेलापन, वो अधिकांश समय अकेला रहना चाहता है, या फिर उसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी व्यक्ति झूठ भी बोलता है। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो आसानी से जो व्यक्ति उसके साथ रहने वाले वो बहुत आसानी से जज कर सकते हैं कि ये व्यक्ति किसी ना किसी विकार में पड़ा है, और हम लोग इससे अगर बैठ के बात करें तो वो जरूर शेयर करता है।
1: जी। तो सर, जो नशे
0: जी
1: मुक्ति केंद्र हैं, तो इनमें मुख्य रूप से किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं?
0: बिल्कुल, नशा मुक्ति केंद्र जो है वहां पे एक ओपीडी की व्यवस्था होती है सबसे पहले,
1: जी
0: मतलब जो भी पेशेंट आते हैं
1: जी
0: उनका एनरोलमेंट होता है, उनके परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति का आकलन लिया जाता है, वो लिखा जाता है, व्यक्ति किस प्रकार के सब्सटेंस या पदार्थ का उपयोग करता है, उस चीज की हम लोग एंट्री करते हैं, अपने रिकॉर्ड में रखते हैं उसको।
1: जी
0: उसके अतिरिक्त हम लोग ये देखते हैं कि व्यक्ति को कितनी काउंसलिंग की आवश्यकता है, उसको काउंसलिंग की व्यवस्था होती है, प्रॉपर डाइट के लिए जो है नशा मुक्ति केंद्र में व्यवस्थाएं होती है, उसको किस प्रकार की डाइट दी जाना है जिससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास बना रहे।
1: जी तो सर, पीड़ित व्यक्ति के इलाज के दौरान सबसे बड़ी जो चुनौती है वो क्या होती है? जी
0: सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो व्यक्ति सबसे पहले झूठ बोलता है कि मैं नशा नहीं करता हूं,
1: जी
0: या फिर जब वो नशे को स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं करता हूं और मैं इससे निकलना चाहता हूं,
1: जी अच्छा
0: उसमें कभी जभी चिड़चिड़ाहट, उग्रता उसके व्यवहार में, चीजों को
1: जी
0: तोड़ना, फेंकना, झूठ बोलना, घबराहट, बेचैनी, बीपी का बढ़ जाना, बीपी का कम हो जाना, ये बहुत बड़ी चुनौतियां होती है किसी व्यक्ति के नशे को छुड़वाने के लिए।
1: और सर, अब अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति नशे से पीड़ित है और
0: हाँ,
1: अब वो नशा छोड़ना चाहता है, तो पहला कदम क्या होना चाहिए? उसे किसे सहायता लेनी चाहिए? वो कहाँ पर संपर्क करे? कोई हेल्पलाइन नंबर हो तो हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति अपने मन से नशा छोड़ना चाहता है या परिवार का कोई सदस्य अपने किसी पारिवारिक सदस्य का नशा छुड़वाना चाहता है, तो
1: जी
0: प्रत्येक जिले में सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र चलाए जाते हैं, वहां पर काउंसलर्स होते हैं, उनसे संपर्क किया जा सकता है। उसके अतिरिक्त एक नेशनल टोल फ्री नंबर होता है जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा सारे श्रोताओं को,
1: जी
0: 1-444-6, ये नशा मुक्ति के लिए एक नेशनल टोल फ्री नंबर होता है, 1-444-6।
1: जी
0: इसी प्रकार से नारकोटिक्स हेल्पलाइन का भी एक नंबर होता है, वो होता है 1933, मतलब 1933। तो इन नंबर्स पर भी हम लोग कॉल करते हैं, ये टोल फ्री नंबर होते हैं, इससे नशे

0: नशा मुक्ति से संबंधित जो है सलाह निशुल्क प्राप्त हो सकती है और 24 घंटे प्राप्त होती है।
1: जी विजय सनावा जी, फोन के माध्यम से आप हमसे जुड़े और अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर आपने बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें और हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुनी भेंटवार्ता अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर। जानकारी दे रहे थे समाज सेवी विजय सनावा। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: करूंगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग की।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, नशे के दुष्परिणामों से बचाने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल करें। देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार, पहले की तरह बहाल हुई सेवाएं। और आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे वहां के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय सहयोग में सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगे। बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशेल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थायी मित्रता को नई गति देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि नशे के दुष्परिणामों से किशोरों और युवाओं को समय रहते परिचित कराना जरूरी है। नशे के विरुद्ध वातावरण बनाने के उद्देश्य से स्कूली और महाविद्यालयीन स्तरों के पाठ्यक्रमों में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता पर केंद्रित सामग्री शामिल की जाए। वैश्विक संकट के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार आने के बाद केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब पश्चिम एशिया संकट से पहले ही आपूर्ति बहाल कर दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार थोक एलपीजी की आपूर्ति को पहले से 50% तक बढ़ा दिया है, जिससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही सरकार ने पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने का भरोसा भी जताया है। भारत ने जर्मनी में सुहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 में कल 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 4 और पदक जीतकर 25 पदक अपने नाम कर लिए। उधर आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए रविवार को ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। वहीं भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। भारतीय

0: अनुसार यह मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। लोकतंत्र प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या का दिन बताया। उन्होंने कल ग्वालियर में कहा कि आधी शताब्दी बीतने के बाद भी उन्हें अपने स्कूली जीवन की वे यादें ताजा रहती हैं। मंत्री पटेल ने कहा कि देश ने आजादी के बाद जो अन्याय और यातनाएं झेली हैं, उसकी जानकारी आगामी पीढ़ी को होना जरूरी है, ताकि वे समझ सकें कि लोकतांत्रिक मूल्य कितने महत्वपूर्ण हैं।
1: लोकतंत्र की हत्या का दिन था वो, आधी शताब्दी बीत गई है और पर मुझे लगता है कि जब आपातकाल लगा था तब मैं पढ़ता था स्कूल में। आज वो जनरेशन जरूर याद रखे कि मूल्य कैसे सुरक्षित होते हैं। लोगों ने आजादी के आंदोलन की बातें तो सुनी है, लेकिन उसके बाद देश की आजादी के बाद जो अन्याय इस देश पर हुआ, जिनने यातनाएं सही हैं, उनकी जानकारी भी आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए। और जिन लोगों ने लोकतंत्र बचाने के लिए यातनाएं सही हैं, उनका स्मरण भी होना चाहिए और उनको नमन भी होना चाहिए, और उसी कारण से पार्टी प्रतिवर्ष काम करती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर जल संकल्प से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राज्य में एक अभूतपूर्व जल क्रांति का सूत्रपात किया है। ये बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी ने अपने हालिया लेख में मुख्यमंत्री को जनप्रिय जननायक के रूप में रेखांकित करते हुए लिखी है। लेख के अनुसार मुख्यमंत्री पिछले 22 वर्षों के अपने भागीरथ संकल्प और अटूट निष्ठा के बल पर वे जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश के पारंपरिक जल स्रोतों, कुओं और बावड़ियों का कायाकल्प कर रहे हैं। आस्था के केंद्र मां शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त और अविरल बनाना है उनका मुख्य उद्देश्य, ताकि आगामी सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालु शुद्ध जल से स्नान कर सकें। भोपाल के रविंद्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश से आए करीब 2000

0: गन्ना के बीच में क्या मूंगफली लगा रहे हैं, अब यहाँ पे शुरू हुआ इच्छा, इंटरक्रॉपिंग भी करें और वहीं पशुपालन भी हो, जिनकी रुचि है वो मछली पालन करें, जिनकी रुचि है उनसे कह रहा हूँ मधुमक्खी पालन हो सकता है, कृषि वानिकी या एग्री बेस्ड फॉरेस्ट एग्री बेस्ड एग्रीकल्चर हो सकती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल यहाँ बना है, उसको जरूर देखना आप। चार पांच चीज करो मेरे भाई, हमारे यहाँ कहते थे चार खून।
1: प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कल प्रदेश के कलेक्टर्स को शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकरण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुशासन के लिए सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने और हर विद्यार्थी की अपार आईडी बनाने को कहा। बैठक में शिशु मातृ मृत्यु दर को कम करने, सभी जिलों में पशु आश्रय स्थल विकसित करने और पीएनजी कनेक्शन के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के बदरवास में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की 8 कंपनियों ने भाग लिया। इस मेले में 159 आकांक्षी युवाओं का प्रारंभिक चयन कर उन्हें मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए। खंडवा के शासकीय आईटीआई में 2 जुलाई को रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिस मेले के विभिन्न निजी कंपनियां करीब 200 पदों पर भर्ती करेगी। इसमें 18 से 35 वर्ष आयु के 5वीं से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवा भाग ले सकेंगे। आगरमालवा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग

खंडवा के शासकीय आईटीआई में 2 जुलाई को रोजगार स्वरोजगार और अप्रेंटिस मेले के विभिन्न निजी कंपनियां करीब 200 पदों पर भर्ती करेगी। इसमें 18 से 35 वर्ष आयु के 5वीं से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवा भाग ले सकेंगे। आगर मालवा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय विकासखंड स्तरीय शिविरों में वयोश्री योजना के 99 वरिष्ठजनों और एडिप योजना के 63 दिव्यांगजनों को चिन्हांकित किया गया है। अशोकनगर में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर योजना के तहत एथलेटिक्स कोच की नियुक्ति की गई है। इसके अंतर्गत विभिन्न विधाओं में रुचि रखने वाले और आर्मी व पुलिस भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। कटनी जिले में स्कूल चले हम अभियान के तहत शाला प्रारंभ उत्सव के दूसरे चरण में शासकीय स्कूल दोबारा खुल गए हैं। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के 100 से अधिक अधिकारियों ने स्कूल में प्रेरक बनकर बच्चों का मार्गदर्शन दिया। झाबुआ कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एसएन मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक कल संपन्न हुई। बैठक में जनता की सुविधा के लिए भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक सीमाओं आदि पर चर्चा की गई। डिंडोरी जिले के महदवानी में जन अभियान परिषद द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत दंदना नदी तट पर स्वच्छता श्रमदान किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। श्रोताओं, आकाशवाणी खंडवा से लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुनहरे पल।

सुनहरे पल कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं नाज़मा परवीन। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश के गाए इस सदाबहार गीत से।

श्रोताओं, कार्यक्रम का शुरुआती नगमा आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। सबक फिल्म के इस गीत को लिखा सावन कुमार ने और संगीतबद्ध किया था ऊषा खन्ना ने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में सुनिए पूनम फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और चंद्रानी मुखर्जी के युगल स्वर में। हसरत जयपुरी ने इस गीत की रचना की है और अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया है।

0: पराग जी, मैं सोच रही हूँ कि ये जो अब नया सत्र शुरू होने वाला है, तो क्यों ना मैं भी अपना एक नया काम कर लूँ।
1: कौन सा काम?
0: मैं सोच रही हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल लिया जाए।
1: अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया है ये तो।
0: पर मैं अपने काम का प्रचार प्रसार कैसे करूँ?
1: कैसी बात कर रही हो, आकाशवाणी के माध्यम से करो।
0: हाँ, आकाशवाणी तो मैं रोज सुनती हूँ।
1: रोज सुनती हो तो उसपे विज्ञापन दे सकती हो, या फिर तुम किसी कार्यक्रम को भी प्रायोजित कर सकती हो।
0: अच्छा, कौन सा कार्यक्रम?
1: जैसे हमारे श्रोता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता अपनी प्रतिभा को भी अपनी बातचीत के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं।
0: मतलब मैं अपने कोचिंग की विस्तृत जानकारी श्रोताओं तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा सकती हूँ।
1: बिल्कुल, और इसके अलावा और भी कार्यक्रम होते हैं जिन्हें आप प्रायोजित कर सकती हो, और साथ ही साथ इन कार्यक्रमों में अपनी संस्था के विज्ञापन भी दे सकती हो।
0: ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है।
1: तो कब जा रही हो आकाशवाणी खंडवा?
0: अभी।
2: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन,
3: आकाशवाणी खंडवा।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं सुनहरे पल। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति त्रिशूल फिल्म से है।

खयाम साहब के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी का लिखा गीत त्रिशूल फिल्म से। आवाजें थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशुदास की। लीजिए अब सुनिए गंगा की लहरें फिल्म का ये गीत।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। गंगा की लहरें फिल्म के इस गीत को संगीतबद्ध किया था चित्रगुप्त ने।
1: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
2: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
1: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
2: क्यों?
1: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
2: वो कैसे?
1: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
2: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
1: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
2: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
1: आप कब आ रहे हैं
2: आकाशवाणी खंडवा पर?

0: अरे बैठना होनी, काई हुई गयो आज?
1: हम सुनी रहे आज आकाशवाणी खंडवा, निमाड़ की सुरीली धड़कन।
2: ना आज तो निमाड़ की सुरीली धड़कन सुनी खना।
3: मजा आ गया।
4: सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
5: श्रोताओं, सुनहरे पल की अगली प्रस्तुति में सुनिए नैया फिल्म का गीत यशुदास की आवाज में। शब्द और संगीत रविंद्र जैन का है।

श्रोताओं, ये संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साथियों ने।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिमी एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए नीट UG की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet

0: sect.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रुपए शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा, नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना 1,000 रुपये महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने

0: वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि केदार में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
2: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 8:15 और 25 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी खंडवा से अब प्रस्तुत है निमाड़ी लोकगीत। कलाकार हैं कैलाश सिंह और साथी।

0: मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं निमाड़ी लोकगीत। लीजिए अब सुनिए संत सिंगर जी पर केंद्रित ये निमाड़ी लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कैलाश सिंह और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है।
1: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन
2: आकाशवाणी खंडवा।

0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। आकाशवाणी खंडवा से पेश है कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
1: आपके मीत ये गीत।

सात रंग के सपने फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे बाबुल सुप्रियो, अलका याग्निक और साथियों के स्वर में। इस गीत को पसंद किया हमारे इन सभी श्रोताओं ने। पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन, ईशांत और तनुजा देवांगन ने। श्रीरामपुर से हैं अशोक दले, सविता, अनिकेतन, रोहिणी और ऋषिकेश, जीविका दले। पुणे से हैं अजय सोनमने, करिश्मा और अविका सोनमने। दुर्गा कॉलोनी हंसी से हैं राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, योगी और बब्बू और डब्बू। खंडवा से हैं अब्दुल गफार डावर, खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक और मोहम्मद उमर डावर। इन्हीं के साथ हैं राजेंद्र कटारे। निजामाबाद से हैं तेलंगाना से शेख अल्लाह बख्श, राबिया और शेख रहीम मुन्ना। रिंग रोड नर्मदा नगर से हैं सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा। महेश्वर से हैं प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा। जसवाड़ी से हैं दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, बाबू दिव्यांश और राजू और सूरज कुमार ढाक से। नजमुल हुदा, एसएम जावेद और शगुफ्त अंजुम ये हैं झारखंड से। महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गौहाणकर, राही, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत और टुक टुक गौहाणकर। नागपुर से हैं वैशाली, शैलेश गौहाणकर, एकांश, सुमित और कुमारी धोनी गौहाणकर परी। जुनापानी सनावद से हैं कालू सिंह बडोले, सीताराम, हीरालाल, साहिल, सुमन और हरिओम, भावना, विशाल, तनु, आस्था, लकी, वंदना और इमली। लकड़ बाजार खंडवा से हैं मोहम्मद रफीक पमार, मोहम्मद साकिब पमार, बेबी हमीना फातिमा और मोहम्मद हसनैन पमार। ग्राम दीवाल से हैं शंकरलाल गंगराड़े, वनीता और वामिका गंगराड़े। जामली कला से हैं माणक चंद राठौर, पुष्पाबाई राठौर। जुनापानी सनावद से कालू सिंह बडोले, सीताराम, हीरालाल, साहिल, सुमन और हरिओम, इनका ईमेल शामिल हो चुका है। रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता, निखिल और तन्वी बोट। यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सरला और रोशनी, चेतन, विशाल, बेबी, प्रियांशी। पेठन से हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद और सोनल, बेबी सिया जाधव। मुंबई से हैं अहमद भाई फुलवाले, दुखनी सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद फुलवाले। और छत्तीसगढ़ से हैं नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार, बेबी जोई और इनके अन्य साथी। उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी और ऋतिक बलवीर सिंह। कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल और पूजा परिहार।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: आप सुनी रहे आज निर्माण की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: पराग जी, मैं सोच रही हूँ कि ये जो अब नया सत्र शुरू होने वाला है तो क्यों ना मैं भी अपना एक नया काम कर लूँ।
1: कौन सा काम?
0: मैं सोच रही हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल लिया जाए।
1: अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया है ये तो।
0: पर मैं अपने काम का प्रचार प्रसार कैसे करूँ?
1: कैसी बात कर रही हो, आकाशवाणी के माध्यम से करो।
0: हाँ, आकाशवाणी तो मैं रोज सुनती हूँ।
1: रोज सुनती हो तो उस पे विज्ञापन दे सकती हो, या फिर तुम किसी कार्यक्रम को भी प्रायोजित कर सकती हो।
0: अच्छा, कौन सा कार्यक्रम?
1: जैसे हमारे श्रोता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता अपनी प्रतिभा को भी अपनी बातचीत के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं।
0: मतलब मैं अपने कोचिंग की विस्तृत जानकारी श्रोताओं तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा सकती हूँ।
1: बिल्कुल, और इसके अलावा और भी कार्यक्रम होते हैं जिन्हें आप प्रायोजित कर सकती हो, और साथ ही साथ इन कार्यक्रमों में अपनी संस्था के विज्ञापन भी दे सकती हो।
0: ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है।
1: तो कब जा रही हो आकाशवाणी खंडवा?
0: अभी।
2: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

श्रोताओं, आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें ईमेल किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, और छत्तीसगढ़ से ही हैं मुकेश गोस्वामी, मधु आशी और शिवनिया अनु गोस्वामी। पंजाब से हैं हरजिंदर चिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। तेलीवाला से हैं निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, अयान बाबू। मलोट पंजाब से हैं राज वर्मा, मीना शर्मा, योगेश और इनके अन्य साथी। ये हमारे श्रोता हैं सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। खंडवा से हैं किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मन मानस और कनिका पटेल। धर्मपुरी से हैं शेख फहीम मोहम्मद, तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान, फैजान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी। राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, अजय नारायण चौहान, तरुण और प्रतीक चौहान। राजस्थान से ही हैं वेद और अलका। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी। सहारनपुर से हैं सुरेश नारंग, आशु और सोनाली नारंग। छत्तीसगढ़ से हैं माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा। छत्तीसगढ़ से ही हमें ईमेल किया है रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान ने। महाराष्ट्र से हैं शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल और शुभम प्रसाद, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल ने। आप सभी ने सुना चाहा है गजनी फिल्म के गीत को। गायक स्वर जावेद अली सोनू निगम का है, शब्द रचना प्रसून जोशी की और संगीतकार हैं ए आर रहमान।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत है बाजीगर फिल्म से, पसंद है आप सभी की। छत्तीसगढ़ से हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और तुषार डोली, बेबी पूजा राधिका और प्रभा देवी तामुरिया। खंडवा से हैं सुदामा महेश।

ईश्वरी, सीता, आशीष, अमन और महाराज कुशवाहा। राजेंद्र नगर डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू और मोहित नारंग, इन्हीं के साथ हैं तानिया नारंग। मलकापुर से हैं संजय पाटिल और अयोध्या नगर जलगांव से हैं अरुण और इनके अन्य साथी। नेपानगर से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति और सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। दिल्ली से हैं आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया, आशु अहमद। छत्तीसगढ़ से हैं नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार। ईमेल इनका शामिल हो चुका है। और उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी और रियाज रिफत, मोहम्मद रिहान, समरीन और माहिरा नूर। बड़ा बम चौक खंडवा से हैं ममता मारकंडे और संजय मारकंडे बेबी किट्टू। महाराष्ट्र से हैं गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप। अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला और ज्योति, साथ हैं इनके रियांश ठाकुर। जाखोद से हैं शंभुदयाल खटक, विमला, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक कुमार, कुमारी, पूजा खटक। और गुजरात से धीरज रवारी। उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान और इनके समस्त साथी। दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल और कमला रानी, गीतिका, भानु प्रकाश। गुजरात से हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। घंटाघर चौक खंडवा से हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। जूनापानी के हमारे श्रोता हैं सनावद से कालू सिंह बडोले, सीताराम, साहिल और सुमन, हरिओम, भावना बडोले। गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल। और जमशेदपुर से हैं रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल। हमारे इन सभी श्रोताओं ने सुना चाहा है बाजीगर फिल्म का ये गीत, नवाब आरजू का लिखा और अनु मलिक का संगीतबद्ध किया ये गीत है। आवाज़ हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की।

0: श्रोताओं, बाजीगर फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारा आज का आपके मित्र ये गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: आपके मीत ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम अनुप्रसारित करेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: सिंघम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अजय अतुल का संगीत था।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: अकेली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे गुरुशब्द सिंह और चयनिका गर्ग की आवाजों में। बोल गुरुशब्द सिंह के थे, संगीत भी इन्हीं का था।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: थप्पड़ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। राघव चैतन्य की आवाज में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों नशा केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है। ये एक ऐसी बेड़ी है जो व्यक्ति की उड़ान और उसके सपनों को छीन लेती है। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग मस्ती या टेंशन दूर करने के लिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन ये कब एक जानलेवा लत बन जाता है पता ही नहीं चलता। आज का दिन उन लाखों परिवारों के नाम है जिन्होंने अपने को इस लत के कारण खोया है। लेकिन आज का दिन सिर्फ गम मनाने का नहीं बल्कि संकल्प लेने का भी है, खुद को बचाने का और अपने परिवार को सचेत रखने का संकल्प। जो लोग इस दलदल में फंस चुके हैं उनका हाथ थामकर उन्हें सही रास्ते पर लाने का दिन भी है। दोस्तों नशीली दवाओं की अवैध तस्करी और दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको अपने आसपास कुछ भी संदिग्ध लगे या अगर आपको लगता है कि कोई अपना मदद के लिए पुकार रहा है तो खामोश न रहें, मदद के लिए आगे आएं। नशा नाश की जड़ है और हमें मिलकर इस जड़ को काटना है। तो चलिए आज के इस दिन हम वादा करते हैं कि हम न सिर्फ नशा मुक्त भारत का सपना देखेंगे बल्कि इसे पूरा करने के लिए अपनी छोटी छोटी कोशिश भी करेंगे। जिंदगी बहुत हसीन है दोस्तों, इसे किसी नशे की भेंट न चढ़ाएं, अपने हुनर को पहचानें, अपने सपनों को जिएं और नशे को कहें ना। आज 26 जून है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 को स्थापित किया गया था। आज के दिन नशा मुक्ति के लिए और इसका उद्देश्य है नशा मुक्त समाज का निर्माण करना, इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना सुनिए शिल्पा राव की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं, अमित त्रिवेदी का संगीत है।

0: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना था, शिल्पा राव की आवाज, स्वानंद किरकिरे के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। यह है प्रोग्राम का आखिरी गाना।

एनिमल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। गरिमा के बोल थे श्रेयस पुराणिक का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: गाना। कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
1: संगीतकार खयाम।
0: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।
1: आया है राजा, लोगो रे लोगो राजा।

0: टाम डटक रहता मैं आया है राजा
1: लोगो रे लोगो
0: राजा के संग संग
1: जुमलो जुमलो
0: आया है राजा
1: लोगो रे लोगो
0: राजा के संग संग
1: जुमलो जुमलो।
2: वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8,500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।
3: वो तो

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव-गांव शहर-शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे। और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहां वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैया राजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैया राजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैया राजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैया राजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कजू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिनथई किलनथे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

0: सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलैयाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलैयाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, क्या जोर से बजी है,

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को, और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

और फिर आई फिल्म शमिताभ, जिसके गाने लिखे स्वानंद किरकिरे ने, और इस फिल्म में था ये दिलचस्प गाना अमिताभ बच्चन की आवाज में।

अपनी फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार A.R. रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैयाराजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने गवाए।

इलैयाराजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे, तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया, हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है, और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

यहाँ आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजाविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्र वीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

0: पैलेस।
1: चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाख, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक

इलिया राजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलिया राजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिनी और युवान शंकर राजा। इलिया राजा के ये 3 बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलिया राजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है, और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलिया राजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहाँ तक कि अपने भाई को भी, इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलिया राजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है, और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलिया राजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलिया राजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहां इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है, और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैयाराजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैयाराजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहन लाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैयाराजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैयाराजा ने तमिल फिल्म पागल नीलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

में इलियाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिंफनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बनाता है।

0: संगीतकार इलैयाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। अब जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: থেকে আমি দ্বিবেদিকা বাজিন স্বরে শরদ বাঘি লাগে।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिंगरौली जिले की चिट्ठी, आलेख अमित द्विवेदी, वाचन स्वर शरद बाघेला। बीता हुआ महीना सिंगरौली जिले से विकास कार्यों, प्रशासनिक सतर्कता, खेल जगत की उपलब्धियों और सामुदायिक कल्याण की दृष्टि से मिलाजुला रहा। हाल ही में

0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सिंगरौली प्रवास के दौरान जिले के लिए विकास का बड़ा पिटारा खोला गया। मुख्यमंत्री ने यहां कुल 552 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जो जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की 24 लाख महिलाओं के खातों में 3 महीनों की कुल 115 करोड़ रुपए की अनुदान राशि ट्रांसफर की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत भी 33.71 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 202.28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजी गई। इस प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय छात्राओं से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधा संवाद भी किया। जिले में खेल संस्कृति को नई दिशा देने के लिए एक अत्याधुनिक खेल परिसर की स्थापना की जा रही है, जो युवाओं को बेहतर सुविधाएं देकर उनकी प्रतिभा को निखारने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही जिले की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करने वाला सिंगरौली महोत्सव और नगर गौरव दिवस 23 मई से 25 मई तक आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ जिले की प्रभारी मंत्री संपत्तिया उइके और राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद रहीं। आगामी मौसम को देखते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर गौरव बैनल की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक शियाज के एम की उपस्थिति में आपदा प्रबंधन कार्य योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी एसडीएम को बाढ़ प्रभावित गांवों और संवेदनशील नदी नालों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि यदि नदी नालों के बहाव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण है तो सर्वे कर उसे तत्काल मुक्त कराया जाए। साथ ही बाण सागर बांध और सोन नदी में जल स्तर बढ़ने से प्रभावित होने वाले संभावित गांवों का निरंतर भौतिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए। खेल जगत की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2026 में सिंगरौली के नन्हे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 10 मेडल जीतकर नया इतिहास रचा है। कलेक्टर ने इन प्रतिभावान खिलाड़ियों की सराहना करते हुए मुख्य कोच गणेश सिंह को एक योजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके तहत जिले के शासकीय स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में बच्चों विशेषकर बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए नियमित कराटे प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर द्वारा आम का पौधा रोपा गया। उन्होंने अधिकारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि केवल पौधा लगाना काफी नहीं है, बल्कि उसका एक बच्चे की तरह संरक्षण करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जिले के सभी शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाने की भी बात कही। दूसरी ओर दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने मुखबधिर दिव्यांगजनों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि उनकी रुचि के अनुसार CSR मद के माध्यम से रोजगार के अवसर और RCT के माध्यम से ब्यूटी पार्लर व टेलरिंग जैसे प्रशिक्षण दिए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बंद पड़े दिव्यांग विद्यालय को फिर से संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जहां BEd प्रशिक्षित स्थानीय शिक्षकों द्वारा बच्चों को संवेदनशील वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। सिंगरौली पुलिस की त्वरित कार्रवाई और साइबर सेल की सतर्कता से साइबर ठगी का शिकार हुए शांतिनगर बैडन निवासी राहुल कुमार सोनी को उनके खाते से धोखाधड़ी कर निकाले गए 51,000 रुपए वापस करा दिए गए हैं। पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले के 198 नव आरक्षक मिले हैं, जिनमें से 28 नवनियुक्त आरक्षकों को SP शियाज के एम ने स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार SP द्वारा 2 चौकी प्रभारियों समेत कुल 89 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है, जो पिछले 4 वर्षों से एक ही थाने या शाखा में पदस्थ थे। स्वास्थ्य क्षेत्र में NTPC विंध्य चिकित्सालय द्वारा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 136 लाभार्थियों को विशेषज्ञों द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। अंत में नोनिहालों के विकास के लिए चल रहे आरोहण समर कैंप 2026 में बैडमिंटन, टेबल टेनिस और डांस गतिविधियों में लगभग 180 बच्चे उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, जिन्हें अनुभवी कोच द्वारा मार्गदर्शन और पोषण युक्त स्नैक्स प्रदान किए जा रहे हैं। निष्कर्षता सिंगरौली जिला प्रशासन, पुलिस और जनप्रतिनिधि मिलकर स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सुरक्षा और पर्यावरण के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सिंगरौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अब सुन रहे थे सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख था अमित द्विवेदी का और वाचन स्वर थे शरद बाघेला के। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है, लीजिए प्रस्तुत।
2: जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था। FM बैंड 101.2 MHz पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। अब बहने सुने कार्यक्रम नारी जगत।

कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नारी जगत में। बहनों, आज का नारी जगत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी मुना दफ्तरी। स्वीकार करें हमारा इस सुहाने मौसम में प्यार भरा नमस्कार। बहनों, सोचे विचारे एक दशक पूर्व की जब हम अपने जीवन की सोचे ना, तो एक सपना लगता है। कुछ बातों पर हमें हंसी भी आती है तो कुछ बातों पर हमें पछतावा भी होता है कि हम यह क्या कर रहे थे, काश हमने ऐसा किया होता, काश हमने वैसा किया होता। लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वक्त रेत की तरह हमारी मुट्ठी में फिसल चुका होता है और हम बस सोचते ही रह जाते हैं। अब यह तो बात हुई अतीत की सखियों, लेकिन हमें आगे का भी तो सोचना है। आखिर जो बीत गया सो रीत गया, लेकिन आने वाला कल तो हमारा है, उसे तो हम संभाल ही सकते हैं। और संभालना खुद को हमारी खुद के प्रति जिम्मेदारी है। आप सोचने लगी ना सखियों की क्या बात है। आज मोना दीदी इतना घुमा फिरा पर क्यों बात कर रही है, विषय क्यों नहीं बता रहे हैं? तो बहनों, हम आ जाते हैं अब सीधे विषय पर। योग, जीवन का आधार, योग से लाभ। आखिर ऐसा क्या है योग में जो हमारे जीवन का आधार है? योगी व्यक्ति सखियों जरूरी नहीं कि सन्यासी हो या साध्वी हो, जो अपने जीवन में प्रकृति के बनाए अनुशासन को संभाल ले वह योगी है। योग करें, निरोग रहें। सखियों, योग हमारे जीवन का आधार है। योग के हमारे जीवन में क्या लाभ है? प्रारंभिक बिंदु तो बच्चा भी आज का समझता है बहनों। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, हमारे सभी तरह के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है योग का नियमित अभ्यास। सबसे पहले तो बहनों लचीलापन आता है नियमित अभ्यास से। वही लचीलापन हमारी शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। योग का नियमित अभ्यास हृदय स्वास्थ्य में सुधार लाता है विशेषकर। और योग के साथ साथ जब हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो शरीर का एक एक अंग गतिशीलता को बढ़ाता है, हमारी स्मरण शक्ति और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। आजकल बहनों हम अपने आसपास देख ही रहना कि तनाव की अत्यधिकता, यही स्ट्रेस शरीर को अंदरूनी रूप से कमजोर कर देता है। चाहे वह बीपी हो, शुगर, थायराइड या फिर हम बहनों की हार्मोन संबंधी कोई समस्या, सभी का प्राथमिक कारण स्ट्रेस ही होता है। सखियों, खुद हमारे हाथ में हमारा स्वास्थ्य है। कुछ समय प्रातः संध्या खुद के लिए निकालें। योग के लाभ के साथ हम अपनी चर्चा को सखियों जारी रखेंगे, लेकिन अपनी वाणी को देते हैं कुछ देर का विराम और आपके साथ साथ हम भी सुनते हैं यह प्यारा सा गीत।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: सखियों, योग के लाभ के बारे में अगर बात की जाए ना, तो शारीरिक लचीलापन, तनाव से मुक्ति, हृदय स्वास्थ्य में सुधार, बेहतर नींद, वजन नियंत्रण, इम्यूनिटी बूस्टर, श्वसन तंत्र की मजबूती, एकाग्रता, साथ ही मानसिक शांति के साथ क्रोनिक दर्द में राहत, और हमारी इन सब बातों के साथ शारीरिक शक्ति और संतुलन तो जीवन का बढ़ता ही है। विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित है, सुबह की सैर के साथ योग मस्तिष्क को तरोताजा कर शरीर को निर्देश देता है निरोगी काया का। अब सखियों,

0: बहुत सारी बातें हमने योग के लाभ के ऊपर आपसे कर ली, अब हम बढ़ते हैं कुछ आगे विस्तार से जानकारी लेकर। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुगंधा वर्मा भटनागर। विषय जो है वह भी हमारा ऐसा है जो हमारे मन मस्तिष्क से जुड़ा है, योग एवं ध्यान का भावनात्मक और मानसिक सुदृढ़ता में महत्व। आइए सुनते हैं यह भेंटवार्ता। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय के साथ आपके साथ हैं जो आज की प्राथमिक आवश्यकता है और हमारे साथ साथ आप भी इसकी समझ रखते हैं। हमारा आज का भेंटवार्ता का विषय है योग एवं ध्यान का भावनात्मक और मानसिक सुदृढ़ता में महत्व। आप समझ ही गए हैं कि एक ऐसा विषय लिया है, तो यहाँ बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हमने अपनी विषय विशेषज्ञ को बुलाया है, डॉक्टर सुगंधा वर्मा भटनागर मैडम।
1: नमस्ते मोना जी, और आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम।
0: मैम, यहाँ पर जो हमारे कुछ श्रोता ऐसे होंगे जो पहली बार आपसे मिल रहे हैं भेंटवार्ता के माध्यम से, तो जानना चाहेंगे आपका संक्षिप्त परिचय।
1: जी, मैं डॉक्टर सुगंधा वर्मा, मैं एक डेंटल सर्जन कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए तत्परता से कार्य कर रही हूँ, और मैं हार्टफुलनेस ध्यान से ध्यान पद्धति से भी जुड़ी हुई हूँ।
0: जी मैम, जो एक मानसिक स्वास्थ्य के लिए निशुल्क अपने अनुभव के साथ कम्युनिटी में आना, उनके लिए काम करना, ये कहीं ना कहीं खुद की चेतना के बाद ही व्यक्ति को इस मार्ग पर लेकर आता है। आप इस मार्ग पे हैं और हमारे लिए अनुभव के साथ हैं, तो अब हम अपना विषय को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले तो जो आज हमने विषय लिया है, इस विषय का परिचय, क्योंकि अधिकतर यही होता है कि योग और ध्यान को एक समझा जाता है और भावना और मानसिक दृढ़ता उसको एक समझा जाता है, तो हम पहले जाने विषय का परिचय।
1: जी देखिए मोना जी, क्या है कि जो योग है उसको कहते हैं कि योग आत्मा का परमात्मा से मिलन है,
0: जी
1: कि
0: जी
1: जब हम अपने अंदर झांकते हैं और हमारी जो आत्मा है वो एक शांत हृदय से परमात्मा का मनन करती है, चिंतन करती है, तो उस पद्धति को योग का एक एक छोटा सा हम इंट्रोडक्शन मान सकते हैं, सिंपल शब्दों में, साधारण भाषा में, कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। फिर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जटिल समाज हो गया है हमारा, सोशल मीडिया से लोग हर छोटी छोटी बातों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बढ़ती प्रतिस्पर्धा हो गई है छोटी छोटी बातों में। अब देखिए जैसे कितने लाइक्स आ गए, हम इसी पर चिंता करते रहते हैं कि कितने लाइक्स आए नहीं आए, उसकी रील अच्छी थी मेरी कैसी थी। फिर शहरी जीवन शैली आ गई है, भागदौड़ की स्थिति बनी रहती है शहरों में, तो लोग घंटों सफर तय करके अपनी कार्यस्थली पे पहुंचते हैं, फिर कार्य के बाद मतलब उनका दिन भर ही बाहर, घर से बाहर बीत जाता है, इतनी व्यस्तता चलती है। फिर रिश्तों में दरार, नैतिकता का पतन, ये सभी जो है ये विकार आजकल बहुत ही कॉमन हो गए हैं, हर जगह देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में जब हम योग की बात करते तो योग दो तरह से होता है। ऐसी परिस्थिति में देखिए, जब ये पूरी सामाजिक समाज में समस्याएं आ रही हैं और जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से योग का महत्व और भी बढ़ जाता है। अब योग भी एक है शारीरिक योग जिसमें व्यायाम आता है, और दूसरा आता है मानसिक योग जो ध्यान है। अब शारीरिक व्यायाम की जो बात करते हैं तो उससे हमको क्या फायदा होता है भाई? जब हम व्यायाम करते हैं तो हम में लचीलापन आता है, संतुलन बढ़ता है, दर्द से राहत मिलती है, कई बार बेहतर रक्त संचार होता है, ब्लड प्रेशर और सूजन में भी कमी आती है, हार्मोनल बैलेंस बनता है, इन सब से हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। फिर आता है हमारा मानसिक ध्यान, जो मानसिक व्यायाम है वो क्या है? ध्यान है। ध्यान अब किन लोगों को ध्यान की जरूरत है? ध्यान वो लोग कर सकते हैं जो मानसिक शांति चाहते हैं, बेहतर एकाग्रता चाहते हैं, तनाव मुक्त जीवन चाहते हैं अपने लिए। आधुनिक भागदौड़ भरी जिंदगी में चिंता अवसर

0: अनिद्रा से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों के लिए, और ऐसे लोगों में हम लोग ऑलमोस्ट सभी लोग ही शामिल हो जाते हैं, तो हम सभी के लिए ही ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर आते मानसिक शांति जब हमें मिलती है, तो उससे जब हम ये ध्यान करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि मानसिक शांति आ रही है उससे। सबसे बड़ा धन जो है वो क्या है? मानसिक शांति। तो जब हम ध्यान करते हैं, अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, तो हमें बहुत से फायदे मिलते हैं। जैसे तनाव में कमी होती है, बेहतर एकाग्रता आती है, आत्म जागरूकता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आनंद की प्राप्ति होती है, हम सही फैसले ले पाते हैं। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हमारे जब हम विचलित रहते हैं तो हम बहुत सी बातें जो सही भी हो रही होती हैं वो भी गलत कर जाते हैं।
1: सही बात है कि यहाँ पर मैं भी सोच विचार में पड़ गई कि आखिर जो मानसिक रूप से जो असंतुलन की स्थिति बनती है।

0: सबसे बड़ा धन जो है वो क्या है? मानसिक शांति। तो जब हम ध्यान करते हैं, अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, तो हमें बहुत से फायदे मिलते हैं। जैसे तनाव में कमी होती है, बेहतर एकाग्रता आती है, आत्म जागरूकता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आनंद की प्राप्ति होती है, हम सही फैसले ले पाते हैं। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हमारे जब हम विचलित रहते हैं तो हम बहुत सी बातें जो सही भी हो रही होती हैं वो भी गलत कर जाते हैं।
1: सही बात है कि यहाँ पर मैं भी सोच विचार में पड़ गई कि आखिर जो मानसिक रूप से जो असंतुलन की स्थिति बनती है, कहीं ना कहीं हम उसकी शुरुआत समझें तो हमारी वर्तमान की जीवन शैली और भावनात्मक रूप से जो उतार चढ़ाव, वह कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार होता है और हम खुद ही उसका मार्ग बनाते हैं। अब मैम,
0: जी
1: यहाँ
0: मीना
1: तो
0: जी,
1: हमने परेशानियां देखी कि कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक किस हद तक जा रही है, लेकिन हम इस विषय की गंभीरता को लेते हुए अब सुधार की तरफ आते हैं कि कैसे हम अपने मन मस्तिष्क को खुद के साथ स्वीकार कर पाए।
0: जी मोना जी, देखिए ये जो मानसिक विचलन है, ये हर एज के लोगों के लिए आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो जैसे बच्चा भी है तो आज उसको भी टेंशन है, पढ़ाई का टेंशन है, बच्चों को उनकी परीक्षा में आगे अपने करियर में क्या करने वाले हैं उसका टेंशन है। बड़े हैं तो उनको अपना कैसे उनका खर्च निकलेगा, कैसे कमाएं, कमाई के साधन कैसे जुटाएं, और अपने जो जहां कार्य कर रहे हैं वहां पे कैसे बने रहें, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। तो इन सब चीजों में हर एज ग्रुप में आप बुजुर्गों को देखेंगे तो उनको एकाकीपन सता रहा है। तो बहुत हर एज में कुछ ना कुछ समस्याएं देखने को मिलती रहती हैं जो अब बढ़ गई हैं। और इसका हम उपाय अगर देखना चाहें तो एक तो है नियमित व्यायाम करना, योग करना, फिर ध्यान करना, धार्मिक कार्यों में अपने आप को संलग्न करना, फिर हम अपने जो हमारी रचनात्मकता है उसको उभार सकते हैं, तो उससे भी हमको मानसिक शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो ये सब जो चीजें जब हम करते हैं तो हमें वो आनंद का अनुभव होता है। और दूसरी चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बोलना चाहूंगी मैं इधर, कि आपस में बात करना। देखिए, बात करने से ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। कई बार आज कहने को तो हम बहुत करीब हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से रोज एक मैसेज आता है, मगर क्या हम उसकी गहराई में उतरे हैं? जो सामने वाले का मैसेज आ रहा है, क्या हम गहराई से जुड़े हुए हैं? नहीं, वो रिश्तों में गहराई कम होती जा रही है उसके कारण।
1: जी
0: जो
1: जी
0: पहले आप बात करते थे अपने मन की हम एक दूसरे से, और अपनी बातें बांटते थे, वो कम हो गया है। तो सबसे अच्छा और बेहतर तरीका कि बोलें, अपनी समस्याएं बोलें, जिससे भी आपको लगता है कि आपका करीबी है, जो विश्वसनीय है, आप उनको अपनी समस्याएं बताएं। कई बार सिर्फ बताने से ही बहुत सारी चीजों का हल हो जाता है, भले ही सामने वाला आपको कोई समाधान बताए या नहीं बताए, मगर आप खुद का भी स्वयं अवलोकन भी कर सकते हैं।
1: जी, अब यहाँ पर मैम योग और ध्यान, तो ध्यान को कैसे माध्यम, क्योंकि आम व्यक्ति तो ध्यान की समझ में सिर्फ यही होता है कि यह सिर्फ साधु संतों का काम है, लेकिन जीवन को अपना सुगम बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाएं, कहाँ से अपनाएं, उसका प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त करें, यह आम व्यक्ति की समझ से परे होता है, तो इसमें भी कुछ आपका अनुभव हम अपने श्रोताओं तक
0: जी
1: पहुंचाना चाहेंगे।
0: जी देखिए, ध्यान की हमारे भारत में बहुत सी पद्धतियां प्रचलन में हैं। जो पद्धति मैंने जिसको एक्सपीरियंस किया है, मैं उसको आप तक शेयर करना चाहूंगी आप सभी से। मैं जैसे हार्टफुलनेस पद्धति का से हम जुड़े हुए हैं, तो इसमें जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने हृदय के प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उसमें आपको और कुछ जो भी आपको विचार आ रहे हो अपने जीवन से संबंधित, उन सब को धीरे धीरे आपको भुलाना रहता है और अपने हृदय के प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करना रहता है। अच्छा, ये सुनने में बहुत सिंपल है,

0: और करने में भी सिंपल है, सुनने में भी नहीं करने में भी सिंपल है, मगर आप ये देखेंगे ये छोटी सी सिंपल सी, सुनने में जो सिंपल सी चीज लग रही है बस इतना करना है, मगर वो इतने बड़े बड़े बदलाव ले आती है आपकी जिंदगी में, और कब ले आती है वो पता भी नहीं चलता है। क्योंकि आप जैसे जैसे ध्यान करते हैं, आप अपने आप के विचारों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, आप में स्थिरता आ जाती है, आप बहुत जल्दी ना दुख आपको सताता है ना खुशी में आप अपने आपे से पार हो पाते हैं, एक स्थिर, जैसे वो समुद्र में होता है ना कैसे शांत और स्थिर रहता है, वैसी स्थिति का अनुभव होने लगता है।
1: जी
0: और
1: जी
0: ये स्थिति ही हमको शांति की ओर अग्रसर करती है।
1: जी मैम, आपकी बातों से ही ऐसा लगा कि थोड़ा सा बस अपने आप से हम बात करें तो सारी समस्याओं का तो नहीं, लेकिन कुछ स्तर तक हम अपनी समस्याओं पे कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। अब मैम हमारी कुछ समय की बाध्यता है, आपसे तो और भी बहुत सारी बातें करनी है, लग रहा है कि आपकी बातों को सिर्फ सुनते
0: जी
1: रहे और हम ध्यान करते रहे उन बातों पे। पर अब कुछ ऐसा मैसेज जो हमारे श्रोताओं के बीच में जाना जरूरी है जो इस कार्यक्रम को आज सुन रहे हैं।
0: देखिए, मानसिक शांति सबसे बड़ा धन है, स्वस्थ तन और मस्त मन रखें। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि खुश रहें और स्वस्थ रहें।
1: यहाँ पर मैम खुश रहें और स्वस्थ रहें, खुश हैं तो स्वस्थ होने की गारंटी तो 100%
0: जी जी
1: मिल ही
0: बिल्कुल।
1: जाती है। और मस्त रहें के लिए हमारा आकाशवाणी कार्यक्रम सुनते रहें, गीत संगीत के साथ अच्छे अच्छे वक्ताओं की उनके अनुभव के साथ जानकारी हमारे श्रोता लेते रहें, तो मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में कहीं ना कहीं हमारा आकाशवाणी परिवार भी उनकी मदद करता ही करता है। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः और किसी विषय के साथ आपको जल्दी हम याद करेंगे, आज हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सखियों अभी हमने सुनी भेंट वार्ता, योग एवं ध्यान का भावनात्मक और मानसिक सुदृढ़ता में महत्व, विस्तार से हमसे जानकारी साझा की डॉक्टर सुगंधा वर्मा भटनागर ने। और सखियों अब आगे आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखते हैं। सखियों मादक पदार्थों का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व नशा निवारण दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है, यानी आज ही का दिन। उद्देश्य सखियों हम जानती हैं कि नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए सभी को विश्व स्तर पर जागरूक करना और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एक सहयोग को मजबूती से निर्माण करना है। सखियों यहाँ पर विषय से हम उद्देश्य समझ ही रहे हैं कि सबसे पहले तो जागरूकता बढ़ाना, रोकथाम में निवेश करना, मतलब नशा के जो विकल्प हैं उसको रोकने के लिए सामूहिक स्तर पर प्रयास करना, और जो अवैध रूप से तस्करी हो रही है उस पर लगाम लगाना। अब पहल कौन कर सकता है सखियों? शासन प्रशासन तो अपना काम करता ही है, लेकिन हम लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा। और भारत में पहल की बात की जाए तो भारत सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान चलाया ही जा रहा है। अब हम कैसे योगदान करेंगे इसके लिए सब में सिर्फ इतना ही करना है कि इससे पहले कि नशा आपको अपनों से दूर कर दे, आप नशे को अपने से दूर कर दे। यानी कहीं पर भी ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो उसका मानसिक और मनोबल ऐसा बढ़ाएं कि उसका सम्मान बरकरार रहे, और जिस भी स्तर पर, क्योंकि हर व्यक्ति की कहानी अलग होती है, उसे सहयोग करें। और सखियों अब सुनते हैं यह गीत।

शकी इस गीत के बाद हम जानते हैं कि आपको इंतजार है आज की टिप्स का, बदलते मौसम में नाखूनों की देखभाल। सखियों, बारिश का पानी नाखूनों पर भी असर करता है। दरअसल पानी नहीं बल्कि मिट्टी, कीचड़ और बहाव की गंदगी पानी के माध्यम से फंगस का कारण बनती है। सबसे पहले तो कोशिश यही रहे कि साफ पानी से हम साफ करें बारिश में आने के बाद। अब हमें करना क्या है, सरसों के तेल में कड़ी पत्ता जब तक काला ना हो जाए तब तक गर्म करें। अब इसमें डालें मेथी दाना और फिर कुछ ठंडा होने पर इसमें डालें हल्दी। हल्दी की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रखनी है ताकि पेस्ट बन जाए। अब इस गर्म तेल के मिश्रण को ठंडा होने दें और छानकर इसे बॉटल में या डिब्बे में ढककर रखें और फिर रुई की सहायता से या फिर कॉटन के कपड़े से नाखूनों पर लगाएं, रात भर छोड़ दें। और सखी अब सुनते हैं यह गीत।

अभी नारी जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 10:40 हुए हैं। आकाशवाणी खंडवा से प्रस्तुत है निमाड़ी लोकगीत।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: आप सुनी रहा नी माड की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं राजाराम गोलकर और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत।

0: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
1: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
0: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
1: क्यों?
0: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
1: वो कैसे?
0: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
1: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
0: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
1: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
0: आप कब आ रहे हैं?
1: आकाशवाणी खंडवा पर।

निमाड़ी लोक संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे राजाराम गोलकर और साथियों के गाए लोकगीत। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब हम अनुप्रसारित करेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

रंग तरंग रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले छाया गांगुली की आवाज, जमीर काजमी के बोल हैं

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

विविध भारती से रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज कुछ ऐसे गाने जिनमें हैं बारिश के छींटे। लता मंगेशकर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत, सुमित्रा कुमारी सिन्हा के बोल हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत आपने सुना।
1: किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं। हवा की सांस क्यों सहमी हुई है, मेरी वाकिफ थी जब आती थी कमरे में, मेरे सीने में भर जाती थी जैसे बादवां भरते हैं कश्ती के। ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे, बिलकती रहती है बैठी हुई अब बंद रोशनदानों के पीछे। दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है, न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।
0: मौसम का झोंका गुलजार की आवाज में आपने सुना, उनका ही ये कलाम ये कब आते हो एल्बम से था। और अब भूपिंदर की आवाज़।

0: चंदनदास की आवाज में ये निदा फाजली का कलाम था। विविध भारती पर रंग तरंग।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: रंग तरंग अब सुन रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग। हमें खेद है कि आखिरी गाना आप ठीक से नहीं सुन पाए। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर

0: सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, यादों की महफिल।

कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

शैलेंद्र के बोल थे एस टी बर्मन की तर्ज फिल्म का नाम गाइड। यादों की महफिल विविध भारती से। अगला गाना आनंद बख्शी की आवाज में, उन्हीं की रचना है, फिल्म का नाम बालिका वधू।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए सुरीला सफर।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम में हम एक इबारत, एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और वो टेक्स्ट कार्यक्रम के काफी पहले पोस्ट कर दी जाती है, आज भी कर दी गई है। तो आज की इबारत आपको बता दें, बदरा की गागरी में ढेर सारा पानी, मन को रंगीला करे बारिश की कहानी, इन हवाओं में चलो उड़ चले कहीं, ना आसमां का पता हो ना दिखे जमी, ऐसे मौसम में जाने क्या क्या याद आए, कभी मन मुस्कुराए कभी आंख भर जाए, दिन में एक बजे जब मिलेंगे हम, गीतों का हाथ पकड़कर साथ चलेंगे हम। भाई, इस टेक्स्ट को पढ़कर बहुत सारे श्रोताओं के रिएक्शंस हमारे पास आ गए हैं और इन तमाम रिएक्शंस को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश भी करेंगे। तो एक दूसरे के साथ इस कार्यक्रम का सफर हमें आगे तय करना है।

एक श्रोता हैं जिन्होंने कविता का जवाब कविता से दिया है। वो लिखते हैं, इबारत की इजाद वाले स्वयं पधारे हैं, आज सफरे कारवां के भाग्य न्यारे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के सुरीला सफर में गानों की बौछार होने लगी है, जो बारिश की बूंदों की तरह टिप टिप कानों में एक मधुर आवाज घोल रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट, एक श्रोता है जिनका अंदाजा है कि आज तो गागरी वाला मशहूर गाना बजेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि और कोई गीत हो ना हो लेकिन ये गाना जरूर होना चाहिए कि रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी से वो पहली मुलाकात, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, फिर से आई यो बदरा विदेशी और जब जब बहार आई। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज फिर बारिश की कहानी में पानी, कैसा है आपका रंग जिंदगी का शोर, बारिश के तारों पर आई बारिश, याद है वो कागज की नाव, वो बारिश का पानी। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने बाकायदा प्रॉपर लिस्ट भेजी है, यानी इस इबारत में जितने शब्द हैं उन शब्दों पर गाने, और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर गाने मैच कर रहे हैं। जो शब्द इन्होंने चुने हैं, बदरा, गागरी, पानी, मन, रंगीला, बारिश, हवा, उड़ आसमान जमीन, ओ हो हो, 20 शब्द चुन लिए हैं। क्या बात है, क्या मेहनत है, सलाम। और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों पर अपनी बातें कही हैं। आप सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी इस गाने के साथ कार्यक्रम का आगाज। क्या आपका गाना हमारे गाने से मैच किया? और हां, एक और बात, आपके शहर में बादल सिर्फ छाए हैं या बरस भी रहे हैं? और जब छाते हैं बदरा, आपके मन में आती हैं कौन सी बातें? जल्दी से विविध भारती के फेसबुक पोस्ट पर जाइए और कीजिए कमेंट। विविध भारती का फेसबुक पोस्ट खोजने के लिए फेसबुक पर सर्च बॉक्स में लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, फिर पहुंचिए सुरीला सफर की पोस्ट पर। देखिए बादल छा गए हैं, कचरा घुलने लगा है, घटाएं बरसने लगी हैं। इस गाने में महिला स्वर किस गायिका का है ये बताइए।

ये सुदास के साथ हेमांति शुक्ला की आवाज बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब दिया है और ये खुशी की बात है क्योंकि कम चर्चित गायिका को अगर आपने पहचान लिया इसका मतलब आप फिल्म संगीत के सही कदरदान हैं। पहला ही गीत बहुत खूबसूरत है, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने ये रिपोर्ट की है कि यहाँ सिर्फ बादल छाए हैं, बारिश का इंतजार है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब है कि आपका गाना क्या है, कहाँ से छाए बदरा, हमें मालूम है समुद्र से आए बदरा। एक और श्रोता है जो कहते हैं, कविता में कहती हैं, बादल के छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हैं हमारे शहर के आसमान में, जाने कब एक होकर बरसे, जाने कब प्यास बुझे सूखे अरमान की। भाई कविता करने की इन्होंने कोशिश की। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि मुझे पता था कि ये गाना बजेगा, ये मेरा पसंदीदा गाना है। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं, सफ़ेद बादल छाए हैं बिना पानी वाले, जाने कब होगी बरसात। एक और श्रोता है जिन्होंने कविता लिख भेजी है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागर

उनकी ये कविता मजा आ गया। आपने कविता लिखी फिलीपींस से एक श्रोता का, मैसेज ये है कि मौसम खुशगवार है, सूरज देवता आंख मिचौली खेल रहे हैं और थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। एक और श्रोता अपने खेत पर बुवाई करते हुए सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहां बादल शादी में मुंह फुलाए फूफा की तरह घूम रहे हैं, नजर तो आएंगे पर किसी काम के नहीं है। क्या बात है भाई, आपकी इस बात और इसकी इस बात में जो व्यंग्य था उसमें बड़ा मजा आ गया है। एक और श्रोता है जिन्होंने रिपोर्ट किया है, तापमान 30 डिग्री, ठंडी हवा चल रही है, बादल छाए हैं। देखिए भाई, देश भर के मौसम का जो हाल है वो यहाँ पता चल जा रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जब गर्मी बढ़ती है तो बारिश 2-3 दिन बाद हो जाती है, लेकिन अब 3 दिन हो गए बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि घटा छाई है, किसी भी मिनट बरस सकते हैं बादल। तो ये हैं हमारे तमाम श्रोता जो अलग अलग शहरों से अपने शहर के मौसम को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और उसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि उनकी तमन्ना किस गाने को सुनने की है और उनका गाना और हमारा गाना मैच हो रहा है या नहीं। ये तमाम बातें यहाँ चल रही हैं और उसके अलावा एक और चीज चल रही है, वो है तेज हवा। और हवाओं से मुझे पतंग की याद आ गई। चलिए आज पतंगबाजी से जुड़ी हुई कुछ यादें शेयर करें। जल्दी से मोबाइल उठाइए और कमेंट कीजिए पतंगबाजी से जुड़ी जो आपकी सबसे शानदार याद है वो लिख भेजिए। इस गाने के फौरन बाद पतंगबाजी वाले सारे कमेंट पढ़ूंगा मैं। तो शुरू हो जाइए, किसने किसकी पतंग काटी, किसने मांझा सूता, किसने पेंच लड़ाए और किसने बाजार से ताव लाकर पतंग बनाई।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में गुमराह फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। और पतंगबाजी को लेकर कितने सारे कमेंट्स आ गए। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे पड़ोस में एक लड़का अक्सर पतंग पर एक प्रेम पत्र लिखकर अपनी प्रेमिका तक पहुंचाता था। वो अद्भुत दृश्य होता था। 90 के दशक में प्रेम पत्र का बड़ा क्रेज था। ये कमेंट और इसके अलावा ये कमेंट कि हमारे गुजरात में पतंग मशहूर खंबात के बरोड़ा के जहां बनता है, हमारे गांव में दिवाली के बाद पतंग उड़ाने की शुरुआत हो जाती है, इन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि करीब 50 साल बाद इस संक्रांति में मैं और मुझसे 2 साल बड़ा भाई जो बचपन में बहुत पतंग उड़ाते थे, हम दोनों ने पतंग उड़ाई, मांझा सूता और करीब 3 पतंग काटी, मजा आ गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि पतंग से सिर्फ ये याद आता है कि रफ़ी साहब को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हमको उड़ानी तो नहीं आती है पर अपने भाई की चकरी ज़रूर पकड़ कर रखते थे। रफ़ी साहब को ही नहीं बल्कि मन्ना डे को भी पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पतंग बहुत बनाई लेकिन कभी किसी से पींच नहीं लड़ाया, बस ऐसे ही पतंग उड़ाने में मज़ा आता रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमीरगढ़ राजस्थान से हम लिख रहे हैं और कल ही तेज बारिश हुई है। उसके अलावा एक और श्रोता पतंग की बात पर लिखती हैं कि मेरे भाई कांच की बोतल को फोड़ कर पीस कर महीन करके उससे मांझा सूतते थे और मैं पतंग तो उड़ा नहीं पाती थी लेकिन लटाई पकड़ने का काम मेरा होता था। भाई बहुत सारे ऐसे श्रोता होंगे जिन्हें जो छोटे होंगे और उनके बड़े भाई या बड़ी बहन होंगी, जाहिर है कि पतंग उड़ाने का काम जो है वो बड़े भाई या बड़ी बहन को होता मिलता था और चक्री पकड़ने का काम छोटे भाई बहनों को मिलता था। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सिर्फ चक्री पकड़ने का काम मिला और आपने कई बार ये जोर दिया कि भाई मुझे भी तो दो, मुझे भी तो ज़रा पतंग उड़ाने दो। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि आज की इबारत पकड़कर मैं फ्लैशबैक में जा रहा हूं। मन को रंगीला करने वाली बारिश की कहानी बताना चाहूंगा कि शादी के अगले साल मैं और पत्नी बारिश के मौसम में अजमेर से लूनावाला खंडाला गए थे। किराए पर बाइसाइकिल ली और भीगते हुए दोनों घाटों तक चले गए। ना आसमां का पता था ना जमी का, बस खाइयों का नजारा था। अच्छा अच्छा, ना आसमां का पता हो ना जमी का, इस पंक्ति से उन्हें याद आ गई अपनी ये बात। एक और श्रोता लिखते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को हमारे यहाँ पतंगबाजी होती है। और इसके अलावा एक और श्रोता वो लिखते हैं कि जयपुर में हमारे यहाँ कल बहुत बरसात हुई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बारिश में कॉलेज के वो दिन याद आते हैं जब परीक्षाएं मई जून तक खिंच जाती थीं और समझ नहीं आता था कि पढ़ाई करें या बारिश के मज़े लें। इसके अलावा एक और श्रोता है वो लिख रही हैं कि क्या बोलें, ये बारिश की कहानी आपके लिए, बादल आ भी जाए तो डिलीवरी का पता नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो बारिश के इंतज़ार में हैं। और कई श्रोताओं ने जिस तरह से पतंग की यादें बांटी हैं, हो सकता है कि कुछ और श्रोता अभी रह गए हों और उनके कमेंट्स आते ही होंगे तो उनकी बातें भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तब तक ज़रा आगे बढ़ते हैं और अब अगले

गाने की तरफ, जो बहुत ही झूम झुमा देने वाला गाना है। फिल्म का नाम प्रेम पुजारी, लता मंगेशकर की आवाज। इस गाने के गीतकार का नाम बताइएगा।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना गीतकार नीरज ने लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि हमारा बेटा 1000 रुपए की पतंग लाता है संक्रांति में, दोस्तों के साथ खूब उड़ाया करता था। अब पोते छोटे हैं और वो थोड़े थोड़े मज़े लेते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो सूरत गुजरात में हैं और वो भी इसी तरह पतंगबाजी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट हैं। सौराष्ट्र गुजरात के हमारे कुछ श्रोताओं के ये मैसेज हैं कि किसान वहाँ बेसब्री से बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि बुवाई समय पर हो। अभी तक ज़मीन में बीज पड़ जाने चाहिए थे लेकिन देर हो चुकी है, बारिश नहीं आ रही है। एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि बचपन में पढ़ाई के दौरान मई जून में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शाम को बहुत पतंग उड़ाई है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये सही बात है कि छोटा भाई मैं था तो बड़े भाई साहब पतंग उड़ाते थे और मेरा काम था चकरी पकड़ना, पर मैंने ये महसूस किया कि चकरी पकड़ना भी एक कला है। एक और श्रोता लिखते हैं कि ना तो मैंने चकरी पकड़ी ना पतंग उड़ाई, लेकिन आकाश में रंग बिरंगी पतंगों को देखने में बड़ा मज़ा आता था और जब पतंग कटकर आती थी छत पर तो जल्दी से उठाकर अपने बड़े भाई को दे देती थी। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे गाँव में यदा कदा कुछ बच्चे पतंग उड़ाते हैं और ख़ास त्यौहारों पर उड़ाते हैं। बचपन की याद ये है कि 2 पैसे में 4 पतंग लेकर आते थे और उड़ाते थे। अहमदाबाद में 2 साल पहले 2 महीने मैं वहां रहा तो आसमान पतंगों से भर गया था, जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मुझे पतंग उड़ाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ा करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि पतंग से पींच लड़ाने में मज़ा तो बहुत आता था, लेकिन कई बार ये होता था कि दूसरे की पतंग काटने के चक्कर में अपनी ही पतंग उड़ जाती थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे चक्री पकड़ा दी जाती थी जो इतनी तेजी से घूमती थी कि डर लगता था। तो ये पतंग की बातें बातों बातों में इतनी दूर तक चली आई कि अब हम चल रहे हैं आसमां के नीचे।

ये बताइए कि आज सुबह से आपके होंठों पर, आपके जहन में कौन सा गाना तैर रहा है? आज सुबह से वो कौन सा गाना है जो आपके दिलो दिमाग पर हावी है?

भाई ये गाना हो गया और बहुत सारे श्रोताओं के जो कमेंट्स हैं हमने शामिल करने की लगातार कोशिश की, और अभी भी जब भी कोई गाना ख़त्म होता है तो हम कोशिश करते हैं कि आप सभी श्रोताओं के जो कमेंट इस बीच में आए हैं वो सभी शामिल कर लिए जाएं। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये लग रहा है कि भाई हाँ आपके गाने और हमारे गाने मैच हो रहे हैं। एक श्रोता पता नहीं लपक झपक तू आर्य बदरवा गाने का जिक्र कर रहे हैं, और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो गाने का जिक्र कर रहे हैं। ये उनके जहन में गूंज रहा है ये गाना लपक झपक तू आर्य बदरवा। इसके अलावा एक श्रोता के जहन में गूंज रहा है सिमटी सी शर्माई सी। एक और श्रोता हैं जिनके जहन में आज रपट जाए गूंज रहा है तो किसी के जहन में सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दी जा रही। देखिए किसने तरह के गाने हमारे अलग-अलग श्रोताओं के जहन में गूंज रहे हैं। एक श्रोता लिख रही हैं कि इतना समय ही कहाँ कि कोई गीत जहन में गूंजे, ऊपर से मौसम का मिजाज गर्म, हाय गर्मी उफ गर्मी यही उनकी जुबां पर है। चलिए भाई ठीक है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनकी जुबां पर सुबह से है नैनों में पतरा छाए।

मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी, उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था। दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया की कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थीं पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। यह उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई ना कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं ना कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था क्योंकि 5 साल की छुट्टी, और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सोने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की, हालांकि यहाँ लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी, जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

0: श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए, यहां तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहां कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था। उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए। तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुए।
1: बाजू

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

लहराते गीसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था, हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है। जैसे तैसे रातें कटती हैं, नए साल की शुरुआत होने वाली थी। इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हाँ, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलून

तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

तब नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था। उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे। रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता। यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए, कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलभेक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़बुन में, इस असमंजस में

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। श्रीमान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया, ये सोचकर कि ये तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्क संगत हो ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थीं कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए, और वो काम भी आए। खैर, ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहां दिखाई देता है, इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

आखिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था पर उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ

छूटने लगे। कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही हो, 4 डिग्री तापमान हो। पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे मई जून की दोपहरी हो। इन्हीं भावनाओं को समेटे हिमालय पर जाने जैसा साहस जुटाकर सुश्री वाई को खोजते खोजते श्रीमान एक्स मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ खड़ी अपनी ही धुन में बतिया रही थी। पहले तो श्रीमान एक्स को लगा कि बस इनको ऐसे ही खड़े देखते रहें, उसकी मुस्कुराहट को जीते रहें।

लेकिन फिर ख्याल आया और सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर यहां तक आया हूं, बात आगे बढ़ा ही दी जाए, फिर कब मौका मिले पता नहीं। फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे आगे बढ़ गए। कांपते गले से कहा, हेलो। वो बोली, जी कहिए। जी जी जी कुछ नहीं, वह हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी में इतनी मुर्की थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान एक्स, और बदले में थैंक

0: क्यों मिल गया था। उस कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बना लेते हैं, लेकिन श्रीमान एक्स उन लम्हों को अभी तक किताबों में रखे गुलाब की तरह संजोए हैं।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो।

उन दिनों की बात है। अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर अरुण शेखर का था, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही।

0: मंसूर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। मैं हूं विधि जैन। रूठना मनाना, ये तो प्यार का ही रूप है। शायद वो रूठकर हक जताते हैं और हम मनाकर प्रेम। वो रूठते हैं तो उदास नहीं, प्यारे लगते हैं, और हम मनाते हैं तो बेसहारा लगते हैं। और सहारा देने को वो मान भी जाते हैं और फिर प्रेम अपना कुछ यूं दिखाते हैं।

मैं यूं खामोशियों की ऊट में खुद को छुपाइए, मेरी आंखों की बेचैनी जरा आकर पड़ जाइए। खता मुझसे हुई होगी मगर इतनी सजा कैसी, गिले शिकवे सभी रखिए मगर कुछ तो सुनाइए।

हम जानते हैं वो दूर जा रहे हैं, पर मन से नहीं, बस इतरा रहे हैं। बुरा तो लगा था हमारी बातों का उन्हें, पर अब लगता है बस यूं ही वो भाव खा रहे हैं। इसीलिए हमारी कलम ने लिखा कि चलो अब मुस्कुरा दो, ये गुस्सा छोड़ भी दो, मेरी खातिर अपनी जिद का रिश्ता तोड़ भी दो। जानती हूं ये रूठना बस बहाना है तुम्हारा, मुझसे और थोड़ा प्यार जताना है तुम्हारा।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: अंतराल के बाद पुनः स्वागत है कार्यक्रम छाया गीत में। हम बात कर रहे हैं रूठने की और मनाने की। और अगर प्रेयसी रूठ जाए और कारण पता ना हो तो, पर मनाना तो जरूरी होता है ना, और मनाने के लिए थोड़ी सी जरूरत तो की जा सकती है और थोड़ी सी मेहनत भी। तो कहती है कलम की, तेरी खामोशियों में भी सदाएं सुन रहा हूँ मैं, तेरे रुखसार पर ठहरी दुआएं चुन रहा हूँ मैं, जो तेरी आंखें बरसों से कह ना पाई मुझसे, उन्हीं अनकही बातों के अफसाने बुन रहा हूँ मैं।
1: तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं

किसी के रूठने से दिल तड़प जाता है, उसको मनाने के लिए भी दिल रह ही जाता है। रूठने मनाने के सिलसिले में कई सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और प्यार और मुस्कुराता है। कभी कभी रूठे दिल को देखकर तड़पन और मुस्कुराते देखकर मन की खुशी दोनों ही बड़ी खूबसूरत होती है। कहती है कलम कि मैं आपके नाम की खुशबू लिए फिरती हूँ सांसों में, मेरे एहसास की दुनिया में फिर से मुस्कुराइए। न जीत मेरी न आपकी मोहब्बत की हो बस, चलिए अब मान भी जाइए और मुझे गले लगाइए।

रूठना इजाजत देता है और करीब आने की, और ये मनाना इजाजत देता है फिर से मुस्कुराने की। ये रूठने मनाने के, शिकवे के, शिकायतों के, इन पर्दों

को धीरे धीरे हटाकर ही प्रेम का सुंदर रूप दिखाई देता है। रूठना मनाना, इसकी भी एक हद होनी चाहिए। एक हद के बाद रूठे हुए को मान भी जाना चाहिए। और बस ऐसे ही जो रूठा है वो रूठ तो सकता है, यह उसका अधिकार है, पर मानना ये भी उसके काम में ही आता है। तो रूठिए पर जल्दी मान जाइए। इसीलिए तो कहा है कलम ने, ये जो रूठे हैं लब आपके, मौसम भी उदास है, बहारों की तरह फिर से मेरे आंगन में आइए। मैं अपने हर तर्क को अब प्रेम में बदल दूंगी, आप बस एक बार दिल से मुझे अपनाइए। नजर झुक झुक के कहती है बहुत कुछ आज भी, लेकिन मेरे अल्फाज से पहले मेरी धड़कन को पाइए। जो बीती बात थी उसको हवाओं में बिखरने दें, नए सपनों की चादर फिर मोहब्बत पर बिछाइए।

तो रूठिए पर जल्दी मान जाइए। इसीलिए तो कहा है कलम ने, ये जो रूठे हैं लब आपके, मौसम भी उदास है। बहारों की तरह फिर से मेरे आंगन में आइए। मैं अपने हर तर्क को अब प्रेम में बदल दूंगी। आप बस एक बार दिल से मुझे अपनाइए। नजर झुक झुक के कहती है बहुत कुछ आज भी, लेकिन मेरे अल्फाज से पहले मेरी धड़कन को पाइए। जो बीती बात थी उसको हवाओं में बिखरने दें। नए सपनों की चादर फिर मोहब्बत पर बिछाइए।

0: अब अगर रूठे तो जल्दी मान जाना, अगर शिकवे हों तो जल्दी से मिटा देना, क्योंकि जीवन मुस्कुराने के लिए है और साथ बिताने के लिए। रूठना मनाना एक पल का हो तो अच्छा है, अगर लंबा चले तो बड़ा दुखदाई। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, रूठे को मनाते रहिए, अगर कोई मनाए तो जल्दी से मानते रहिए। छाया गीत कार्यक्रम में आज इतना ही। अब आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।
1: FM 101.2 MHz पर श्रोताओ, ये आकाशवाणी खंडवा है। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा

0: पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
1: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
3: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के

0: जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
1: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ।1985 में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
0: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
1: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
0: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।

0: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
3: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया, गौरव, सब तैयार? वेरी गुड। तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
4: आग का गोला?
3: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
5: सूरज।
3: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
6: बहुत आसान पूछते हो।
3: ओफो क्या करूं, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
6: है। अगली बार में बहुत मुश्किल।
3: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
5: हाँ।
3: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
6: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
3: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
7: वो तारा होता है।
3: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
8: वो रात और दिन भी बनाता है।
3: एकदम सही, एकदम सही।
9: वो हमें धूप भी देता है।
3: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
6: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
3: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
6: विटामिन डी।
3: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत
9: और
3: अच्छे।
9: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
3: हाँ बिल्कुल,
6: पेड़ों को खाना भी देता है।
3: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
6: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
3: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
6: हाँ।
8: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
3: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
6: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
3: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
6: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
9: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
3: ना।
9: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
3: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
6: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
3: बहुत बड़ा होता है
9: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
3: हम क्योंकि कई
6: दूर होता है इसलिए
3: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
6: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
3: हाँ
9: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
3: अरे वाह भाई, तो मुझे

0: नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
1: सर्दी।
0: ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
2: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती है। सूरज आग का गोला, लेकिन
1: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
1: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
1: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
1: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
1: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है।
1: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
1: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
2: मुझे एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
3: जल्दी आना, जल्दी आना।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
2: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ की नहीं आऊँ।
2: वो भी दस पूछेंगे।
0: दस दस पहेलियाँ। अच्छा चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
2: मौसी
0: डर जाती
2: है। और आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे। वो 10 से एकदम 70
3: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे। फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुंचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओ आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी खंडवा से, और अब आपके लिए प्रस्तुत करेंगे युववाणी कार्यक्रम।

गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र, नाम तो आप जानते ही हैं, विभूति। स्वीकार कीजिएगा हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है माह का चौथा शुक्रवार और क्रम है शीर्षक संगीत। जी हाँ दोस्तों, और आज का शीर्षक क्या होने वाला है इसका हिंट तो मैंने आपको पहले ही दे दिया है, बस आपको डालना है दिमाग पर थोड़ा सा जोर। और तब तक हम पूछ लेते हैं आपसे आज के दो सवाल। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और आज का दूसरा सवाल है, ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी किसकी रचना? दोस्तों, इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे कार्यक्रम के अंत में। तब तक बने रहिए हमारे साथ युववाणी में। दोस्तों, 26 जून को पूरी दुनिया में मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि नशा केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चुनौती है। आजकल युवा कई तरह के दबावों का सामना कर रहे हैं। पढ़ाई, करियर, कंपटीशन और सोशल प्रेशर के बीच कुछ लोग नशे को तनाव दूर करने का साधन समझ बैठते हैं, लेकिन सच ये है कि नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जरा सोचिए, एक युवा जिसके पास सपने हैं, लक्ष्य है, यदि वे नशे की

गिरफ्त में आ जाए तो उसका जीवन किस दिशा में जा सकता है। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा या दोस्तों के दबाव से होती है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत लत का रूप ले लेती है। यही कारण है कि जागरूकता और सही जानकारी बहुत ज़रूरी है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1987 में शुरू किया गया ये दिन हमें नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत रहने और दूसरों को भी जागरूक रखने का संदेश देता है। यदि आपके आसपास भी कोई नशे की समस्या से जूझ रहा है तो उसे तिरस्कार नहीं बल्कि सहयोग और सही गाइडेंस की ज़रूरत है। दोस्तों, लत चाहे नशे की हो या आलस की, किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य से भटका सकती है, लेकिन योग और स्ट्रेस मैनेजमेंट के जरिए कोई भी अपनी इन आदतों पर लगाम ला सकता है। और आज माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर हमें जानकारी दे रहे हैं ट्रेनर और फिटनेस कोच प्रमोद पटेल।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पटेल एक फिटनेस कोच और योग प्रशिक्षक हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने शरीर का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने मन का ध्यान रखना अक्सर भूल जाते हैं। काम का तनाव, पढ़ाई का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और मोबाइल की बढ़ती आदत के कारण बहुत से लोग तनाव, चिंता और मानसिक थकान महसूस करते हैं। कई बार हम बाहर से तो बिल्कुल ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से परेशान होते हैं। ऐसे समय में योग और ध्यान हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। योग सिर्फ शरीर को फिट करने का तरीका नहीं है, योग हमें शरीर और मन दोनों को संतुलित रखना सिखाता है। जब हम नियमित योग करते हैं तो शरीर में तनाव कम होता है और मन शांत रहने लगता है। इसी तरह ध्यान यानी मेडिटेशन भी मन को शांत करने का एक आसान तरीका है। ध्यान का मतलब है कुछ समय के लिए अपने मन को वर्तमान पर केंद्रित करना। जब हम ध्यान करते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और बेकार की चिंताएं कम होने लगती हैं। योग और ध्यान करने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि तनाव कम होता है। आजकल तनाव लगभग हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गया है, लेकिन रोज कुछ मिनट योग और ध्यान करने से मन को राहत मिलती है और हम बेहतर महसूस करते हैं। दूसरा फायदा यह है कि चिंता और घबराहट कम होती है। कई लोग छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं। योग और ध्यान हमें शांत रहने और परिस्थितियों का सामना करना सिखाता है। तीसरा फायदा यह है कि भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण, गुस्सा, दुख, निराशा, चिड़चिड़ापन जैसी भावनाएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। योग हमें इन भावनाओं को समझने और संभालने में मदद करता है। योग और ध्यान से एकाग्रता भी बढ़ती है। बच्चों की पढ़ाई में, युवाओं के काम में और बुजुर्गों की याददाश्त में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो लोग नींद की समस्या से परेशान रहते हैं, उन्हें भी योग और ध्यान से फायदा मिलता ही है। जब हम शांत रहते हैं तो नींद भी अच्छी आती है। अब सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। सुबह सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय पर्याप्त है। कुछ देर गहरी सांस लें, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करें और फिर 5 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से ज़्यादा शांत है और पॉजिटिव है। दोस्तों, जैसे हम शरीर को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करते हैं ना, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए योग और ध्यान ज़रूरी है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन दोनों मिलकर ही एक खुशहाल जीवन बनाते हैं। अंत में मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि रोज कुछ मिनट अपने लिए अवश्य निकालें। योग और ध्यान को अपनी दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं। यह आपके शरीर को ही नहीं बल्कि आपके मन को भी मजबूत बनाएगा। इसी संदेश के साथ मैं प्रमोद पटेल आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, स्वस्थ रहे, खुश रहे, योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।
1: अभी आपने सुनी माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर योगा ट्रेनर और फिटनेस कोच प्रमोद पटेल द्वारा

गई जानकारी। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे आज के क्रम शीर्षक संगीत की ओर। तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। वाह क्या बात है, एक नाम जो उत्सुकता जगाता है, यादें ताज़ा करता है और दिल की धड़कन बढ़ा देता है। दोस्तों कहते हैं व्हाट्स इन द नेम, नाम में रखा क्या है, लेकिन दोस्तों नाम महज कुछ अक्षरों का मेल नहीं बल्कि हमारी पहचान का आईना है, हमारी पहचान का पहला परिचय। स्कूल में उपस्थिति हो, नौकरी का आवेदन हो या किसी से पहली मुलाकात, सब कुछ नाम से ही शुरू होता है। हालांकि इतिहास गवाह है कि कई लोगों ने अपने नाम से भी बड़ी पहचान बनाई। और तो और दोस्तों जब मिसाल सच्चे इश्क की देनी हो तो लैला मजनू, शीरी फराद और रोमियो जूलियट के नाम सबसे पहले जुबा पे आते हैं।

दोस्तों, नाम की इस यात्रा में अब पहुंचते हैं भारतीय संस्कृति की अत्यंत सुंदर परंपरा नामकरण संस्कार पर। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में नाम रखना केवल औपचारिकता नहीं, ये एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। हिंदू धर्म में वर्णित 16 संस्कार का विशेष स्थान है। शिशु के जन्म के कुछ दिनों बाद परिवार, रिश्तेदारों और शुभ चिंतकों की मौजूदगी में नामकरण संस्कार संपन्न होता है। परंपरा के अनुसार विद्वान या पुरोहित जन्मतिथि, नक्षत्र और राशि के आधार पर नाम का प्रथम अक्षर सुझाते हैं, जिसके बाद माता पिता अपने बच्चे के लिए ऐसा नाम चुनते हैं जो अर्थपूर्ण हो, शुभ हो और जीवन में सकारात्मक प्रेरणा दे। दोस्तों, नामकरण संस्कार हमें ये संदेश देता है कि हर व्यक्ति इस दुनिया में अपनी एक आइडेंटिटी लेकर आता है और उसका नाम उस पहचान की पहली सीढ़ी होता है।

दोस्तों, बात जब नाम की हो और स्मरण भक्ति का ना हो, ऐसा कैसे संभव है? दोस्तों, नाम जितना पहचान का रूप है, उतना ही है साधना का स्रोत भी। और जब नाम स्मरण की बात आती है, तो सबसे पहले स्मरण होता है भक्त शिरोमणि मीराबाई का। राजमहलों में जन्मी मीरा ने अपने जीवन का हर सुख दुख कृष्ण को समर्पित कर दिया। कहते हैं उनके लिए कृष्ण केवल आराध्य नहीं बल्कि जीवन के साथी थे। मीरा के होठों पर बस एक ही नाम रहता था, श्री कृष्ण। उनका विश्वास था कि सच्चे मन से लिया गया प्रभु का नाम मन को शक्ति, शांति और साहस देता है। मीरा के भजनों में बार बार कृष्ण का नाम सुनाई देता है। मीरा के लिए कृष्ण का नाम ही पूजा था, नाम ही संगीत था और नाम ही जीवन का आधार।

दोस्तों बॉलीवुड में भी नामों का अपना जादू रहा है। कई ऐसी फिल्में हैं जो टाइटल से ज्यादा कैरेक्टर के नाम से फेमस हो गई। राहुल नाम तो सुना ही होगा, ऐसे ही राज, अंजलि, प्रेम, सिमरन और कई नाम जो आज भी हमारी यादों में केवल फिल्मों से बने हुए हैं। और तो और गीतकारों ने भी गानों में हीरो हीरोइन के नाम पर खूबसूरत गाने रचे हैं।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का क्रम शीर्षक संगीत यहीं संपन्न होता है। आपको आज का शीर्षक कैसा लगा हमें अपने नाम खत और ईमेल लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अब चलने से पहले आपको बता देते हैं आज के सामान्य ज्ञान के दोनों प्रश्नों के उत्तर, जिसमें आज का पहला प्रश्न था, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जिसका उत्तर है श्री दौलत सिंह कोठारी। और साथियों, आज का दूसरा प्रश्न था, ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी किसकी रचना है, जिसका उत्तर है श्री वृंदावन लाल वर्मा। दोस्तों, इसी के साथ दे अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की विभूति को। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम।
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
0: आकाशवाणी खंडवा से श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज में गुलजार का गीत हम सुन रहे थे, संगीत राहुल देवबर्मन का और फिल्म किनारा। और अब गुलजार का एक और गीत आपको सुनवाते हैं। ये माया मेम साहब फिल्म का गाना है, कुमार सानू की आवाज में, और संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में गुलजार का एक और गीत आपको सुनवाते हैं। संगीत एक बार फिर राहुल देव बर्मन का, फिल्म आंधी।

0: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं हैं, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आप

0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

इन्हीं दो आवाजों में, यानी लता जी और किशोर कुमार, बॉम्बे टू गोवा फिल्म का एक ड्यूएट आपको सुनवाते हैं। ये राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना है और संगीत राहुल देव बर्मन का।

और आइए श्रोताओ आपको सुनवाते हैं सबसे बड़ी अदालत। इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, ये अमित खन्ना का लिखा गाना है जिसे संगीतबद्ध किया बप्पी लाहिरी ने।

0: एफ एम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओ, हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, आइए सुने दिल्ली से हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 MCC C-17 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यिजांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग करने की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और आयरलैंड के बीच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.2 MHz पर श्रोताओं, हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।
2: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
3: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
2: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
3: क्यों?
2: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
3: वो कैसे?
2: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
3: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
2: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
3: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
2: आप कब आ रहे हैं
3: आकाशवाणी खंडवा पर?

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे।

0: डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
2: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
1: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
2: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
3: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
4: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

हम बने हैं साथी निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा की। ट्यून कीजिए एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज या डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा निमाड़ की सुरीली धड़कन।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के 7:10 हुए हैं। आइए सुने प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अप...

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आज आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट

0: जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय रक्षा दलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। श्री मोदी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा के नशा मुक्त भारत के निर्माण के महत्व पर लिखे एक लेख को साझा करते हुए ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूचना सही समय पर साझा करने से सरकार को मामलों की प्रभावी निगरानी और आवश्यक परामर्श देने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
0: प्रदेश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस हमें जागरूक करता है कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सजग करते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान दें और स्वस्थ सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र के संकल्प को साकार करने में अपनी भागीदारी निभाएं।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले मीसा बंदियों के अखिल भारतीय संगठन लोकतंत्र सेनानी संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश भर के करीब 2000 लोकतंत्र सेनानी और उनके परिजन शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों का शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए कई घोषणाएं भी की।
3: लोकतंत्र सेनानियों को स्पेशल ट्रेन कर देंगे, आप आराम से जहां आपको यात्रा करना है सरकार के माध्यम से आपकी यात्रा कराएंगे। आपने रेस्ट हाउस सर्किट हाउस में 2 दिन निःशुल्क रुकने की बात कही, निश्चित रूप से मैं रुकने के लिए व्यवस्था करने की घोषणा करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहाँ राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी, ये व्यवस्था भी हमारी सरकार के माध्यम से होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले

अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य जन स्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। भोपाल में हजरत इमाम हुसैन की शहादत को लेकर मुहर्रम पर्व अकीदत और गमी माहौल में मनाया गया। शिया समुदाय ने शहर में मातमी जुलूस निकाला, वहीं सुन्नी समुदाय की ओर से रोजा रखकर घरों में इबादत की गई। नर्मदापुरम में विभिन्न स्थानों से ताजियों और सवारियों का जुलूस निकाला गया। बात मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले दो दिनों में इसके भोपाल और उज्जैन संभाग तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून और मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आगरमालवा और सीहोर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य, सिंचाई और ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सीहोर जिले के आष्टा स्थित देवांचल धाम देवबरला बिलपान में प्रदेश का पुरातत्व विभाग जल्द ही रुके हुए विकास कार्यों को दोबारा शुरू करने जा रहा है। शहडोल और झाबुआ जिलों में साइबर ठगी से बचाने के लिए और डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। कटनी के विजय राघवगढ़ वन्य क्षेत्र में 14 वन्य जीव एक साथ मृत पाए गए हैं, जिनमें 12 चीतल और 2 सांभर हैं। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और आगरमालवा जिले में कल आयोजित हुए शिविर में पुलिस अधीक्षक ने आमजनों को ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लिंक और सोशल मीडिया हैकिंग से बचने के प्रभावी उपाय बताए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आज आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7:21 होने को है। किसान श्रोता सुने अपना कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

बारिश का सुहाना मौसम आपका साथ रेडियो पर छे आपकी बहन निरुपमा मिश्रा आप सभी का मारी राम राम। धरती मैया कर पुकार, पानी की तुम करो गुहार, बरस जो अंबर सी अमृत, रोकी लेव ओख अपना द्वार। मैं बनोनी हमारी मिट्टी, हमारी खेती अरु हमारा जीवन की धड़कन छे बारिश को पानी। धरती पर जल की उपस्थिति किना अमृत सी कमनी है, क्योंकि हमारी न धरती का सारा जीव जंतु न की क्रिया इना पानी से जुड़ेल छे। मैं बनोनी हर आवनो वालो साल पिछला साल की तुलना में बढ़ता तापमान अरु जल संकट की समस्या का साथ आई रोज न। यदि हम समय रहते इन समस्या का प्रति सचेत नहीं हुआ तो आगे जीवन जीणु अरु मुश्किल हो जाएगा। भाई बहनोनी प्रकृति ने हमको बारिश का रूप में जल को अमूल्य उपहार दिए छे, जेखा यदि हम हर साल संचयन करा यानी कि जमा करा तो न केवल भूगर्भ की जल की वृद्धि होएगा बल्कि हमको भीषण गर्मी में होने वाला जल संकट को सामनो भी नहीं करना पड़ेगा। भाई बहनोनी सरल शब्द में वर्षा जल संचयन का समझा तो बारिश को पानी जहाँ भी गिर वहाँ जिया ओका आसपास रोकी का इकट्ठो करनु अरु ओका जमीन का अंदर भेजनु। भाई बहनोनी पुराना समय में हमारा बड़ा बुजुर्ग मानसून की कीमत समझता था। वो जानता था कि साल का चार महीना जो बारिश को पानी गिरग ओकासी बाकी का आठ महीना गुजारनु छे। एकासी हर गांव में कुआं बावड़ी अरु तालाब बनाया जाता था न इनका में जमा पानी से घर का साथ साथ कृषि कार्य में भी उपयोग होतो थो। पर वर्तमान समय में हम सबई न खेत अरु घर का आसपास बड़ा बड़ा हार्स पावर का ट्यूबवेल खुदाड़ी लियाज, जेकासी हम जमीन से पानी तो रोज लई राज पर ओका में वापस पानी नहीं पहुँचाई पाई राज। भाई बहनों ने शहर का साथ साथ अब गांव न में भी पक्का मकान अरु सड़क बनी गई, जेकासी पानी बारिश को पानी जमीन में नहीं रिसी पावतो न बही कन नाड़ा में चली जाज, जो कि भूमि का घटता जल स्तर को कारण छे। भाई बहनोनी पहले जो बरसात तीन महीना तक धीरे धीरे होती थी वो अब जलवायु परिवर्तन का कारण कुछ दिन की बरसात में मूसलाधार का रूप में गिरी का खत्म हुई जाज, जेका में सी अधिकांश पानी व्यर्थ भई जाज। ऐसा में यदि इना पानी का रोक्यो नहीं जाए तो वो फिर बाढ़ लावज न फिर बाद में सूखा को सामना भी हमको करनु पड़ज। भाई बहनोनी इनिज बारिश का पानी का यदि हम चरणबद्ध तरीका से सहेजा या संचयन करा तो कई स्तर पर एक फायदा हमको मिली सकज। जैसो कि यदि आपका पास खेत में तालाब छे तो मानसून का बीच में जब 20-25 दिन को सूखो पड़े यानी कि बारिश नहीं हुए तो इना एकत्रित पानी से हम फसल न में सिंचाई करी सकन। दूसरो फायदो ये छे कि बारिश को पानी प्राकृतिक रूप से शुद्ध अरु लवण से मुक्त रज। इना पानी से सींचेल फसल कुआं या ट्यूबवेल का खारा पानी की तुलना में दुगनी तेजी से बढ़ज। भाई बहनोनी बहते हुए पानी खेत की उपजाऊ ऊपरी मिट्टी की परत का बही कर लई जाए तो यदि इना पानी का रोक्यो जाए तो मिट्टी को कटाव भी रुकी जाए। साथ साथ भाई बहनोनी जब हम बारिश का पानी का रोकांगा तो भूजल को स्तर भी ऊपर आई जाएगा तो ट्यूबवेल चलावना का लेन कम बिजली या डीजल की जरूरत भी हमको कम पड़ेगा न हमारा किसान भाई न को अतिरिक्त खर्चों भी एकम नहीं होएगा। भाई बहनोनी वर्षा जल संचयन हम किना प्रकार से करी सकांज एक ही कई कई विधि छे। शासन की एकम किना प्रकार से सहभागिता छे एक बारा में हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगा। अभी हम पूछ लेवांज कृषि संबंधित आज को हमारो प्रश्न। आज को हमारो प्रश्न छे कि मोरी कल्चर केकासी संबंधित छे। इना प्रश्न को उत्तर का लेण आपको करनु पड़ेगा बस थोड़ो सो इंतजार। उत्तर बतावांगा हमेशा की तरह कार्यक्रम का आखिर में। न भाई बहनोनी अव सुनी लेवांज योनी माड़ी लोकगीत जेख गायज बद्र प्रसाद शर्मा अरु साथी नना।

भाइ बन्ने हुनी अभी हमने आनंद लियो बद्री प्रसाद शर्मा और साथी ने को गायो इना निमाड़ी लोकगीत को। भाई बन्ने हुनी इना निमाड़ी लोकगीत में भी हमने जानियो कि किना प्रकार से किसान भाई ने न पानी को रोक करनु चाहिए, वर्षा का पानी को संचयन करनु चाहिए। अपनी बातचीत भी इनाज विषय पर चली रही थी। भाई बन्होनी वर्षा जल संचयन का लेन हम अब बात कराज एक ही विधि का बारे में कि किना प्रकार की विधि अपनाई का हम इना बारिश का जल को संचयन कर सकान। तो एका लेन कोई बड़ी इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं रहती। हम अपना खेत में छोटा छोटा बदलाव करी कभी वर्षा जल संचयन को कार्य कर सकान। वर्षा जल संचयन में पहले जिना तरीका का बारे में हम बात करांगा वो छे मेड़बंदी और ढलान का विपरीत जुताई का बारे में। किसान भाई अपना खेत का चारों तरफ कम से कम 1.5 से 2 फीट ऊंची और मजबूत मेड़ बनावो। एकासी खेत को पानी खेत में रुकोगे। किसान भाई होन ढलान वाला खेत में या पहाड़ी ढलान वाला खेत में ढलान का विपरीत आड़ी जुताई करनु अच्छो रज। इना तरीका से जुताई करने से पानी की गति जो छे वो धीमी हुई जाज और इना पानी को हम जमीन में समय सकान। भाई बहनोनी बरसात का पानी की अगली संचयन विधि छे खेत तालाब विधि। हर किसान भाई को अपनी जमीन का कुल हिस्सा का कम से कम 5 से 10% भाग में तालाब का लेन छोड़नु चाहिए। एका लेन खेत का सबसे निचला हिस्सा में जहाँ पानी प्राकृतिक रूप से खट्टो होज वहाँ एक तालाब खोदनु चाहिए। न एका किनारा पर घास या पेड़ पौधा लगाना चाहिए ताकि किनारा की मिट्टी नहीं धसे। किसान भाई होने यदि आपका खेत की मिट्टी रेतीली छे और पानी तुरंत सोखी लेज तो आप तालाब में नीचे प्लास्टिक की तिरपाल बिछाई सकोज। एका सिकाई होएगा कि पानी जो छे महीनों तक एका में जमा रहेगा। किसान भाई होने यदि खेत में कोई पुराना कुआं या ट्यूबवेल सूखी गो होए तो बारिश को पानी को संचयन करी का एक उपयोगी बनाए जा सकज। एका लेन आपका सूखेल कुआं या ट्यूबवेल का पास एक 3 मीटर लंबो और 2 मीटर चौड़ो फिल्टर गड्ढो बनाऊ चाहिए। इना गड्ढा में सबसे नीचे मोटा पत्थर, बीच में कंकड़ और सबसे ऊपर मोटी रेत की परत बिछावा। अब खेत का बरसाती पानी का रास्ता को इना फिल्टर पीट सी जोड़ी देवा। इना तरह से छनेल साफ पानी सीधो जमीन का नीचे चली जाएगा। भाई बहन

0: कपास में हमारा किसान पहले जो है देसी प्रजातियों को लगाता था, लेकिन जो है
1: बीटी कपास काफ़ी लगाते हैं
0: अब। कपास बीटी काटन जो है ज़्यादा एरिया में लग रहा है, क्योंकि जो पिंक वाल मर्म है देसी में ज़्यादा नुकसान करती थी, लेकिन अब क्या है कि हम बीटी काटन पे आ गए, लेकिन पिंक वाल मर्म इसको भी संक्रमित कर रही है और बड़े पैमाने पर नुकसान कर रही है
1: जी। 90 दिन के बाद अटैक हो जाता है,
0: अटैक हो जाता है जैसे ही वो गुल्ली बनता है जिसको किसान कहता है अपने भाषा में, तो उस समय उसको खा जाती है, फिर उसमें से रुई नहीं बन पाता और ज़्यादा नुकसान हो जाता है।
1: और सोयाबीन का डॉक्टर,
0: सोयाबीन की यदि हम बात करें तो सोयाबीन का क्षेत्रफल ज़्यादा है इधर, और सोयाबीन जो है वर्षा आधारित है, क्योंकि बारिश के समय में भी जहाँ पे सिंचाई के साधन नहीं है, और साधन है भी तो ड्रिप की व्यवस्था किसान के पास नहीं है। रबी में तो ड्रिप की व्यवस्था करता है, लेकिन खरीफ में व्यवस्था सोयाबीन का नहीं करता है, और जैसे ही मानसून आता है तो किसान जो है खेत तैयार करके रखता है पाटा वाटा लगा के, और सीड ड्रिल से सीधे जो है सोयाबीन की वो बुआई कर देता है, और सोयाबीन से उसको प्रति एकड़ जो है 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ जो है सोयाबीन मिल जाता है।
1: डॉक्टर साहब, मक्का फसल में अधिक उपज लेने के लिए किसान भाइयों को क्या क्या करना होगा?
0: किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमको जो है प्रजाति का चयन इस आधार पर करना चाहिए कि हमारे पास कितना पानी मिलीमीटर उस जिले में बारिश होती है, यदि उसके अलावा क्या कोई अतिरिक्त सिंचाई का साधन हमारे पास है क्या, क्योंकि होता क्या है कि मक्का को जो है सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, और क्रांतिक अवस्थाएँ क्योंकि ये 85 से 90 दिन में पक के तैयार हो जाती, बहुत सी प्रजातियाँ हैं कि 70 दिन में ही पक के तैयार हो जाती हैं, तो यदि 10 दिन का गैप हो गया, जो कुछ अवस्थाएं हैं जैसे घुटने भर की घुटने की अवस्था है, उस अवस्था में यदि बारिश नहीं हुआ तो हमको वैकल्पिक रूप से सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। यदि उस अवस्था में हम सिंचाई नहीं करेंगे तो तापमान ज़्यादा होता है और पौधे का विकास प्रभावित होता है और कीड़ों का भी प्रकोप बढ़ता है। पुष्पावस्था है, पुष्पावस्था में यदि हम पानी की समुचित व्यवस्था नहीं किए और आसमान से जो है बादल नहीं बनना है या पानी नहीं गिरा, तो जो है फूल जो है नर जो परागकण है वो सूख जाते हैं और बालियों में जो है दाने कम बनते हैं, तो ये दिक्कत उसमें ये आती है, तो ये हमको ध्यान में रखना है कि कम दिन का लगाना है कि अधिक दिन की प्रजाति लगानी है हमको, और जो है अधिकतर 80-85 दिन की यदि आप प्रजाति का चयन करते हैं और सिंगल क्रॉस लें। बीज की यदि बात है आपको पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि, तो आप कृषि विज्ञान केंद्र जो है सभी जिलों पे हैं, कृषि विभाग के जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं पंचायत स्तर पे भी उनकी नियुक्ति की गई है, आप उनसे जो है जानकारी ले लें, क्योंकि हर जिले पे कृषि विज्ञान केंद्र अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के रूप में फसल जो संग्रहालय है वहाँ पे उन प्रजातियों को लगाता है और वह उसका जो है आंकड़े इकट्ठा करता है कि कौन सी प्रजाति का अधिक उत्पादन मिला, तो वहाँ से आपको सही जानकारी मिल जाएगी।
1: और इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे
0: जी
1: कि मक्का में जैसे आमतौर पर फॉल आर्मीबॉर्न का प्रकोप होता है, इसके अलावा जो उसमें कीड़े लगते हैं, बीमारी लगते हैं
0: जी,
1: इस संदर्भ में अभी से ही किसानों को क्या सुझाव देना चाहिए?
0: किसान भाइयों, सब आपसे विशेष रूप से मेरा निवेदन है कि यदि पहले इससे पहले आपने रबी में मक्का लगाया होगा तो उसमें खरीफ में मक्का न लगाएं, दूसरी फसल लगाएं, और जिसमें यदि दाल वाली चना आपने लगाया है तो उसमें जो है मक्का लगाने की तैयारी करें। जो भी फसल अवशेष है आप उसको जो है कि एक तरफ जो है मिट्टी में दबा दें, उसको खाद के रूप में प्रयोग कर लें, खेत साफ सुथरा जो है होना चाहिए। दूसरा जो है गर्मी की जुताई में आपने खेत को जो है जुताई करके छोड़ दिया है और ऊपरी ज़मीनें जहाँ पे हैं वहाँ पे दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, बहुतायत देखने में होता है, तो आपको किसान भाइयों क्या करना है कि जैसे ही मानसून आ जाए, बारिश प्रारंभ हो जाए, तो अंतिम जुताई करने से पहले 500 ml जो है 50% क्लोरोपाइरीफास का घोल बना लें, और घोल बना के जो भी आप मिट्टी पलट हल से जुताई किए हैं उसमें इसको छिड़काव करके और रोटावेटर चला दें, रिज बना के आप बुआई कर दें। बुआई कर देंगे तो यह जो है 20 से 25 दिन तक जो है दीमक को नियंत्रित करता है। जैसे ही आप सिंचाई करते हैं यह दवा जो है जो उसका घर होता है 2-2 मीटर तक नीचे, उन जो सुराख होते हैं उनके थ्रू जो है दवा उनके जो है मधुमक्खी के तरह से छत्ते बनाते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं और ये अधिकांशतः जो है ख़त्म हो जाते हैं, तो ये इस तरह से यदि आप करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, दूसरा स्टेप, जैसे दीमक से आपको मुक्ति मिलेगी, एक प्ररोह भेदक कीट आता है जिसको हम काइलो बोलते हैं, यह जो है जैसे ही 15 दिन का हमारा पौधा हो जाता है वो एडल्ट मक्खी आती है नर मादा, और वो मिलके जो है अंडे देते हैं पत्तियों के नीचे, और जिनके पौधे का विकास

0: अच्छा होता है, वहाँ पे ज़्यादा अंडे देते हैं, और एक अंडे से एक जो है मादा जो है 30 से 35 अंडे देती है, 35 दिन उसका लाइफ साइकिल होता है, और अंडे से सूनी निकलती है और सूनी उसके प्ररोह में घुस जाती है और वो नुकसान कर देती है।
1: जी, नियंत्रण के लिए
0: किसान भाइयों, नियंत्रण के लिए सबसे पहले क्या करना है कि सुबह और शाम के समय में आप खेत में जाएं और यदि देखें तितली नुमा मक्खी पौधे पे जो है गमछा से या किसी चीज़ से जो है कोई फेंके उड़ते हुए, पर स्क्वायर मीटर में यदि 2 से अधिक मक्खी उड़ते हुए दिखाई दे तो आप इमिडाक्लोरपीड का छिड़काव कर दें, क्योंकि मक्खी को मार देंगे तो फिर सुनी पैदा नहीं हो पाएगी, और बहुत ही कम जो है इमिडाक्लोरपीड 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से, तो 100 सवा 100 ml में जो है 1 एकड़ में उसकी सुरक्षा को अपना के नियंत्रित कर सकते
1: डॉक्टर
0: हैं।
1: साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि मक्का, कपास, सोयाबीन और तुअर में
0: जी,
1: खरपतवार के नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई को क्या करना चाहिए, निदाई कैसे करें?
0: किसान भाइयों, तीनों में जो है अलग अलग दवाएं भी हैं, कुछ में तो कॉमन है। जैसे एक होता है प्रारंभिक अवस्था में, कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही हम फसल बोते हैं और फसल जमती है तो फसल पौधे तो कम दिखते हैं, खरपतवार ज़्यादा दिखते हैं, तो यदि इस तरह की समस्या हो खेतों में जो खरपतवार की बहुतायत अधिकता हो तो प्री इमरजेंस मतलब मुख्य फसल को जमने से पहले पेंडी मेथिलीन होता है, ये साल्ट है 3.3, इसका व्यापारिक नाम जो है पनीडा के नाम से भी आता है और स्टाम के नाम से भी आता है, तो 3.3 लीटर जो है प्रति हेक्टेयर में यदि आप पानी में 600 लीटर पानी के साथ इसको मिला के छिड़काव कर देते हैं तो जो है 25 से 30 दिन तक जो क्रांतिक अवस्था होती है जिसमें जो हमारी मुख्य फसल है जिसकी बढ़वार तेजी से होती है वह प्रभावित नहीं होती है और हमारा पौधा आगे बढ़ जाता है, और उसके बाद सिर्फ क्या करना है आपको जो है जैसे लोकल में मध्य प्रदेश की हम बात करें तो अधिकांशतः किसान कोरपा चला देते हैं और कोरपा से 90% उनके जो खरपतवार 35 दिन के बाद जमते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और लाइनों में जो पौधों के बीच में लाइनों में 10% बच जाते हैं उनको खुरपी की सहायता से निराई गुड़ाई से हमारे किसान ये बाहर कर लेते हैं। बाकी इसके बाद पोस्ट इमरजेंस आता है, तो पोस्ट इमरजेंस की यदि हम बात करें तो मक्का में पोस्ट इमरजेंस में एट्राजीन है ये 500 ग्राम जो है और ल्यूमैक्स है, इन दोनों दवाओं को जब मक्का के में जो खरपतवार है 4 से 5 पत्ती आ जाए और उस पौधे का उम्र 30 से 35 दिन से अधिक न हो तो उस समय उसका यदि हम प्रयोग करवा कर देंगे तो उससे जो है वो नष्ट हो जाएगा और हमारी फसल जो है अच्छा चलेगी। उसी तरह से तुअर में भी हमारा पिंडा तो प्री इमरजेंस है, पोस्ट इमरजेंस में इमेजाथापर है 1 लीटर है लगता है दवा, रसायन है प्लस 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर में मिला लें, क्लोजिलो फॉप है दूसरी दवा है इसको पोस्ट इमरजेंस में इसको भी डाल सकते हैं, और सोयाबीन में इमेजा मैक्स है 35%, इमेजा थापर है 35%, GW ये 40 ग्राम जो है दवा लगता है, दूसरी दवा है MSO एडवेंट ये 1 लीटर प्रति हेक्टेयर में दवा पड़ता है, और इसका दवा का सही जो डालने का समय है सोयाबीन में 20 से 25 दिन का हो जाए जब सोयाबीन, तो उस समय इसको छिड़काव कर दें, और खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, यदि पर्याप्त नमी है तो 5 से 7 दिन में जो है ये खरपतवार जो है ख़त्म हो जाते हैं और सोयाबीन की फसल की बढ़वार तेजी से चलती है। लेकिन किसान भाई मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि पानी की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दें जो कम ना करें।
1: डॉक्टर साहब, हम आपसे एक चीज़ ये जानना चाहेंगे
0: जी
1: कि इस बार का हम मौसम की अगर स्थिति को
0: जी
1: तो जितनी तपनी चाहिए
0: जी
1: नौतपा तपा नहीं
0: जी
1: समय पर जो
0: जी
1: बारिश आएगी
0: जी
1: उसमें उतार चढ़ाव तो आएगा
0: जी,
1: इन स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर खंड बारिश होती है
0: जी
1: या ज्यादा होती है तो क्या करना चाहिए?
0: किसान भाइयों, हम लोगों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है या जो भी हम भविष्यवाणी करते हैं वो अभी तक सटीक जानकारी किसानों को नहीं मिल पाता है कि कब बारिश होगा, तो हम बारिश के इंतजार में कभी कभी क्या करते हैं कि थोड़ा सा बारिश हुआ और हमने फसल की बुआई कर दिया उसके बाद ऊपर पपड़ी भी जम जाती है।
1: बुआई के लिए जमीन में अच्छी बतर आनी चाहिए
0: और कम से कम मतलब किसान भाइयों 10 से 12 मिलीमीटर बारिश हो जाए तभी बुआई करें। 12 मिलीमीटर का मतलब होता है मौसम विज्ञान की भाषा में हम बात करें तो एक हल्की सिंचाई वो पर्याप्त हो जाती है, तो उतनी हो तभी करें और आसमान में बादल हो, नहीं तो पपड़ी पड़ने की संभावना रहती है और जमाव प्रभावित हो जाता है। तो हमारा निवेदन है कि जो मौसम विभाग की साइट हैं, समाचार पत्र हैं या रेडियो है, आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम होते हैं कि अब कल से बारिश होना है, तो आप तैयार रहें बुआई के लिए और बुआई कर दें। और उसके साथ साथ भी वैकल्पिक रूप से

0: क्रांति का अवस्था है, उन अवस्थाओं में भी यदि आपके पास पानी है तो पानी देने के लिए तैयार रहें।
1: जी बहुत ही अच्छी बात बताइए डॉक्टर साहब। जैसे सोयाबीन की फसल है
0: जी,
1: इसको अगर मेरह नाली पद्धति से बोते हैं, अगर पानी ज्यादा हो जाती है तो पानी नाली से बह जाएगा
0: जी,
1: अगर कम जाती है तो संरक्षित जल के उपयोग करके भी सोयाबीन अच्छी हो सकती है
0: जी।
1: ये छोटी मोटी कुछ कृषि तकनीक सलाहें हैं
0: जी,
1: इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे
0: जी
1: कि खरीफ फसलों के अधिक उत्पादन के लिए
0: जी,
1: ये इसमें जो उर्वरकों का बेसल डोज है
0: जी,
1: इसके बारे में क्या कहना?
0: किसान भाइयों, हमारी हर फसल के लिए जो है अलग अलग उसकी मात्रा है। बेसल डोज की बात करें तो चाहे वो मक्का हो, सोयाबीन हो, कपास हो, तुअर हो, बेसल डोज में हम बाद के लिए केवल सोयाबीन में हम क्या करते हैं कि स्टार्टर नाइट्रोजन देते हैं। स्टार्टर नाइट्रोजन मतलब 44 किलोग्राम हम जो है यूरिया प्रति हेक्टेयर में प्रारंभिक अवस्था में देते हैं। बाकी जो हमारा फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, वो सारे को जो है हम बुआई के समय ही, सल्फर है, बुआई के समय ही पूरा डाल देते हैं और बाद में हम नाइट्रोजन डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि उसकी जड़ों में जो है राइजोबियम की गांठें होती हैं और अपने आगे जीवन काल में वो पूरा जो है नाइट्रोजन जो है वातावरण से वो ले लेता है। लेकिन हमारा कपास है, तुअर है, इसमें बाद में भी हमको देने के, तुअर में भी कमी
1: है,
0: मिर्ची है, तमाम चीज़ें हैं, औद्यानिक फसलें भी हैं उसमें
1: है।
0: केला है, पैडी है, यदि हम पैडी की बात करें तो पैडी में तो 3 से 4 बार ट्रांसप्लांटिंग के बाद हमको नाइट्रोजन देना पड़ता है। लेकिन बेस नाइट्रोजन को छोड़ के सारे जो पोषक तत्व तो जितना सिफारिश किया गया है प्रारंभिक अवस्था में बुआई या रोपाई के समय ही डाल देना चाहिए। और यदि पैडी है तो पैडी में जो क्रांतिक अवस्था है, वो कल्ले निकलने की अवस्था है, फ्लावरिंग की अवस्था है, उस अवस्था में 30 किलो प्रति एकड़ जो है एक बार में छिड़काव करेंगे।
1: डॉक्टर साहब, अंत में चलते चलते कौन कौन से मुख्य बातें खरीफ फसलों की उत्पादन तकनीक के बारे में हमारे किसानों के साथ शेयर करना चाहेंगे?
0: किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको जो है उर्वरक संतुलित मात्रा में डालें, अधिक न डालें। मेरा
1: मिट्टी जांच करवा कर उपयोग करें।
0: मिट्टी जांच यदि आप मिट्टा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर लेते हैं मिट्टी जांच करा के, तो यह सबसे अच्छा होगा। उसके अनुशंसा के अनुसार ही जो कार्ड में दिया गया है पोषक तत्वों का उपयोग करें और अपने खेत का प्रतिदिन गहन निरीक्षण करते रहें। किसी भी प्रकार की बीमारी का प्रकोप हो तो आप उसका फोटो लें और हमारे विशेषज्ञों की टीम है उनके मोबाइल पे उसको मैसेज करें और उधर से कौन सी दवा डालनी है, कौन सी बीमारी है, उसको वो चिन्हित करके आपको सुझाव देते हैं और अगले दिन आप दवा का प्रयोग करेंगे तो उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा।
1: अब चलते चलते एक प्रश्न
0: जी,
1: अब हमारे किसान भाई और एक्टिव रहें, अधिक से अधिक कृषि तकनीक का इस्तेमाल खेतों में कर सकें, क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: किसान भाइयों, आज यदि हम अपने ज़िले की ही बात करें तो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी हम लोग जो सभी मौसम के अनुसार जानकारी होती है, बारिश होने की, बीमारी आने की, सब कुछ हम लोग देते रहते हैं। इसके साथ साथ जो है किसान सारथी एक ऐप जो है सारे ज़िलों में जो है कृषि विज्ञान केंद्रों में भारत सरकार ने उसको बनाया है, उस पर भी यदि आपका पंजीयन नहीं है, यदि हम अपने ज़िले की बात करें तो 3,36,000 किसान हमारे जो है उस पर पंजीयन है। कोई भी हम मैसेज करते हैं, जैसे कल हमको ज़िले में बारिश होने की संभावना है 12 मिलीमीटर या आंधी आने की संभावना है, तो पूर्व में हम उनको सूचना दे देते हैं और 3,36,000 लोगों को सूचना मिल जाती है। तो यदि आप उस पर जुड़े नहीं हैं तो आप अपना नंबर जो है कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष से, केंद्र के कर्मचारी से संपर्क करके जिला प्रशासन के द्वारा आप अपनी नाम पता के साथ यदि लिस्ट दे देंगे तो आप सूचना से जुड़ जाएंगे और आपको लाभ होगा।
1: और बारिश के लिए वगैरह दामिनी ऐप का उपयोग कर सकते हैं
0: जी,
1: विभिन्न प्रकार के जो कृषि में उपयुक्त ऐप हैं, कई प्रकार के हैं, उसका आप लाभ ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में भाग लिए और खरीफ फसलों की उत्पादन तकनीक के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: किसान भाई, राम राम।
2: भाई बहनोनी, अभी हम सुनी रहा था खरीफ फसल नमो उत्पादन तकनीक विषय पर ये भेंटवार्ता, जानकारी दे रहा था कृषि विज्ञान केंद्र का वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक आरु प्रमुख डॉक्टर संदीप कुमार सिंह न आपसी बातचीत करी रहा था राजेश पाठक। न भाई बहनोनी, अब समय छे आज का कृषि समाचार न को। आज का कृषि समाचार इना प्रकार सी छे। केंद्र सरकार न 10,103 करोड़ रुपया का परिव्यय का साथ वर्ष 2024-25 से 2030-31 का लेन राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन का स्वीकृति द

दीज। अगला 7 वर्ष में भारत का तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनावना का उद्देश्य सी यो निर्णय लियो गयो। ये नई योजना सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख तिलहनी फसल को उत्पादन बढ़ावना पर केंद्रित छे। साथज ये काटन सीड, चावल की भूसी अरु वृक्ष जनित तेल जैसा स्त्रोत से संग्रह अरु निष्कर्षण दक्षता बढ़ावना पर भी ध्यान केंद्रित करग। इना मिशन को लक्ष्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को वर्ष 2022-23 में 3,90,00,000 टन से बढ़ेकर वर्ष 2030-31 तक 6,97,00,000 टन करनु छे। इना योजना से जीनोम संपादन जैसी अत्याधुनिक वैश्विक तकनीक को उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाला बीज न को निरंतर विकास को एकासी लाभ मिलग। इना मिशन को लक्ष्य घरेलू तिलहन उत्पादन में आशातीत बढ़ोतरी करनु और खाद्य तेल न आत्मनिर्भरता प्राप्त करनु छे। एकासी आयात पर निर्भरता कम होएगा और किसान न की आय बढ़ी कर विदेशी मुद्रा की बचत होएगा। ये था आज का कृषि समाचार। न अव जानकारी मौसम की, आज सूर्योदय सुबह 5:13 भयो, न सूर्यास्त शाम 6:58 भयो, न आज का दिन को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहो, न रात को न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। ये थी मौसम की जानकारी। न भाई बहनोनी, अब कार्यक्रम को समय भी यहाँ पूरा होना में छे। न हम आपसे विदा लेवा ओकासी पहले बताई देवांज आज पूछा गया प्रश्न को उत्तर। आज को हमारो प्रश्न थो कि मोरी कल्चर केकासी संबंधित छे। नायना प्रश्न को उत्तर छे शहतूत की खेती से संबंधित छे। भाई बहनोनी, इना प्रश्न का उत्तर का साथ हज हमारो आज को खेती गृहस्थी कार्यक्रम यहाँ पूरा होज। आज्ञा देव आपकी बहन निरुपमा मिश्रा ख। राम राम।

ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में सुनिए राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं मनोहर वर्मा की लिखी नाटिका बजट एक कमाऊ बीवी का। निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर।

0: टुकड़े बिस्कुट, वाह रे वाह, मैं धन्य हो गया।
1: मैं फिर कुछ कहूंगी तो कहोगे तुनक रही है।
0: डार्लिंग तुम तुनको, खूब तुनको, तुनक ना तुम्हारी सेहत का राज है।
1: हाँ।
0: ये जेल की दीवार से मजबूत तुम्हारा गुलबदन चलती फिरती मिसाल है।
1: बस बस, तारीफ की हंडिया बहुत पक गई, आज पहली तारीख है।
0: हाँ हाँ, और भी चकाचक।
1: श्रीमान जी, कोई तरकीब सोचो, वरना इस बार फाके करने पड़ेंगे। फाके?
0: फाके? और तुम्हारे रहते? असंभव।
1: संभव है, बिल्कुल संभव। पूरे 40 रुपए के घाटे का बजट है।
0: 40 रुपए?
1: अब जरा अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोलने के लिए बीड़ी का एक तुर्रा सुलगाओ, और लो ये है महीने का अनुमानित खर्च।
0: और ये दूसरा कागज क्या है?
1: इनके पीछे बताऊंगी, पहले कोई 40 रुपए के घाटे की पूर्ति का तरीका सोचो।
0: मैं सोचूं डार्लिंग?
1: क्यों, सोचने से कोई पीड़ा होती है या आपका वजन घट जाता है?
0: डार्लिंग ऐसा करो, तुम ही कुछ निर्णय ले लो ना। बात ऐसी है कि ये होम डिपार्टमेंट की बात है और इस मामले में अपना दिमाग
1: वॉकआउट कर जाता है। क्यों, और उन सिर फिरे दोस्तों के बीच राजनीति से लेकर नायिका भेद तक की बातों में तुम्हारा दिमाग जैसे रिश्वत के पैसों की तरह खर्च होता रहता है।
0: बात ये है श्रीमती जी के
1: दो दो अंडे रोज खाकर आपकी अकल मुटी आ गई है।
0: ओहो, कुछ हमें भी तो कहने दीजिए।
1: ये
0: आप जो भी प्रपोजल रखेंगे मुझे स्वीकार होंगे।
1: पक्की बात?
0: बिल्कुल, मेरी कलाई पर तुम्हारी हथेलियों की पकड़ की तरह पक्की।
1: सच? अच्छा, दो वचन
0: दिया
1: तो सुनिए, मेरे पास जो कागज है उसमें आइटम वाइज कुछ कटौतियां हैं।
0: अच्छा।
1: ये कटौतियां हमारी गृहस्थी पर आए हुए आर्थिक संकट को देखते हुए आवश्यक हैं। आप अनिवार्य रूप से इनका पालन करेंगे?
0: अवश्यमेव।
1: खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कह रहे हैं?
0: मैं खुदा के साथ साथ अपनी अन्नदात्री पालनहारा पत्नी श्रीमती।
1: बस बस बस श्रीमान। तो आइटम नंबर एक, मकान किराया, कोई कटौती नहीं,
0: ताज जिंदगी कोई गुंजाइश भी नहीं।
1: और आइटम नंबर दो, प्रोविजन, केवल एक कटौती, उर्द की दाल।
0: है?
1: तुम्हारे सिवाय कोई नहीं खाता है ना?
0: कौन? बस एक तुम ही तो नहीं खाती हो।
1: ओफो, पिछले मैंने आपके ताऊ जी, मौसी जी, चाची जी, बहन जी और छोटे मोटे भाई भतीजे आए थे। उर्द की दाल खाने वाले लोग अल्पसंख्या में थे। आता है?
0: ओहो डार्लिंग, ये सबके सब सेहत के दुश्मन है। तुम तो मेरी सेहत का ख्याल करो।
1: मैं अपने किचन का ख्याल रखूंगी और अपनी बचत का, समझे श्रीमान?
0: देखो वो चने की दाल में।
1: कोई भी समझदार औरत चने की दाल में कटौती पसंद नहीं करती, ये बात आपके सूचनार्थ निवेदन है।
0: मगर क्यों भला?
1: क्योंकि चने की दाल जल्दी बनती है और उसमें कई वैरायटीज बन सकती हैं। अतः 4 किलो उर्द की दाल की जगह केवल 1/2 किलो दाल देने का निर्णय लिया जाता है। और आइटम नंबर 3 में कोई कटौती नहीं।
0: बाय द वे, आइटम नंबर 3 है क्या?
1: तुम आइटम नंबर 4 देखो, अंडे, डबल रोटी और मक्खन।
0: इसमें तो कोई कटौती नहीं होनी चाहिए डार्लिंग।
1: बस इतनी सी कटौती होगी कि आज तक आपके लिए 2 अंडे प्रतिदिन आते रहे हैं और आज से एक दिन छोड़कर एक दिन केवल एक ही अंडा आया करेगा।
0: अंडा? मगर ओहो, मैं आपत्ति करता हूँ, कटौती एकांगी है।
1: तो आप सुझाव दें श्रीमान कि क्या डबल रोटी आधी लेने लगूं या मक्खन की टिक्की आधी कर दूं?
0: डार्लिंग, मेरा मतलब ये था कि
1: मैं जो 2-4 टोस्ट खाती हूँ वो भी बंद कर दूं।
0: ओहो नहीं नहीं डार्लिंग, ये बात नहीं, समझा करो बात को।
1: क्या पता है आपको, मैं दिन भर दफ्तर में सिर खपाती हूँ, आपकी तरह साहित्य वाहित्य रचने का निठल्ला काम नहीं करती।
0: ओफो, इजाजत दें तो मैं भी कुछ कहूँ।
1: आपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कुछ कहा था। अच्छा, मैं आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखते हुए आइटम नंबर 5 में कोई कटौती नहीं कर रही, जबकि दूध वाला हर महीने दूध में पानी की मात्रा के साथ साथ दूध का भाव भी बढ़ाता जा रहा है।
0: धन्यवाद, आपके सौहार्दपूर्ण व्यवहार के लिए मैं आपका शुक्रगुजार।
1: आप कई कई बार शुक्रगुजार होंगे श्रीमान। हाँ, और मैं आपकी आभारी होंगी यदि आप यह बताने की कृपा करें कि आप एक ड्रेस कितने दिन में बदलते हैं।
0: 2 दिन में।
1: तो निर्णय लिया जाता है कि आप कल से एक ड्रेस 3 दिन चलाएंगे।
0: क्या?
1: और चादर, तकिया, गिलाफ वगैरह प्रति सप्ताह के बजाय 15 दिन में बदले जाएंगे।
0: ओह नो।
1: इस तरह आइटम नंबर 6 में धोबी के खर्च में कटौती की जाएगी और आइटम नंबर 7 में कोई कटौती नहीं।
0: आइटम नंबर 7 में कोई कटौती नहीं, क्यों डार्लिंग?
1: फिर वही डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, तंग आ गई तुम्हारी संग्रेजी डार्लिंग से।
0: अच्छा बाबा, श्रीमती जी, देवी जी, बस। अच्छा देवी जी, क्या मैं ये पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि साड़ियों की ड्राई क्लीनिंग के 15 रुपए महीने में कोई कटौती क्यों नहीं?
1: देखिए श्रीमान, मैं मानती हूँ ये खर्च कुछ अधिक है, पर आपको इस आइटम नंबर 7 व 14 के बारे में बाद में बताऊंगी।
0: अच्छी बात है। नाउ आइटम 8,
1: बिजली का बिल, और आइटम नंबर 9,

0: साबुन और टूथपेस्ट, और आइटम नंबर 10 है हरी सब्जी, कोई कटौती।
1: आई ऑब्जेक्ट, मेरा मतलब है कि
0: मैं समझ गई आपका मतलब। कहिए किस बात का गम है आपको?
1: श्रीमती जी, आप अपने लिए दो टिकिया जो महंगा वाला साबुन त्वचा की रक्षा और सौंदर्य वृद्धि के लिए लेती हैं, वो कट।
0: क्यों?
1: सुबह की चाय और रात की कॉफी जो बिजली से बनती है वो बंद।
0: शेम शेम शेम श्रीमान, आपको शर्म आनी चाहिए। नारी के सौंदर्य को नष्ट करने वाले आपके प्रस्ताव की मैं निंदा करती हूँ। क्यों हा? और आपके इस प्रस्ताव पर आपके दिमाग की इस उपज की भर्त्सना करते हुए प्रस्ताव को ठुकराती हूँ। सुनिए, ये मैं क्यों करती हूँ? आपके बीड़ी के टुर्रों की बदबू से बचने के लिए खुशबू वाले प्रसादन जरूरी हैं, और समय के सदुपयोग के लिए बिजली का उपयोग। आया आपके मिजाजे शरीफ में?
1: नहीं आया देवी जी, तो आ जाएगा। ठीक है, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।
0: और मैं अपनी निंदा और भर्त्सना।
1: धन्यवाद।
0: अच्छा, तो अब आप एक दैनिक, एक फिल्मी पाक्षिक और एक मासिक पत्र लेते हैं।
1: जी हाँ।
0: और मेरे लिए सिर्फ एक मासिक।
1: हाँ।
0: तो प्रस्ताव है कि आपका मासिक पत्र जो काफी महंगा है बंद कर दिया जाए।
1: और आप दैनिक क्यों बंद नहीं कर देते?
0: जी, दैनिक की तो रद्दी हो जाती है, और आप मासिक की फाइल बना रहे हैं, अतः वो रद्दी में नहीं बेचा जा सकता, पैसा ब्लॉक होता है।
1: ओहो, मगर मेरी फाइल का क्या होगा?
0: कुछ नहीं, जब हम काफी बचत कर लेंगे तब इकट्ठी फाइल मंगवा लेंगे, क्यों ठीक है ना?
1: जी नहीं।
0: न सही, आइटम 12 और 13, इसमें कोई कटौती नहीं।
1: भाई वाह, क्यों नहीं कटौती?
0: क्यों?
1: अरे पार्टियां लग्जरी हैं, ये बंद होनी चाहिए।
0: आप चाहते हैं मैं ऑफिस की पार्टियों में शरीक न हूँ, सबसे संबंध तोड़ लूं, समुद्र में रहकर मगर से बैर नहीं हो सकता। रही कैंटीन के बिल की बात, चाय तो छूटेगी नहीं। हाँ, अल्पाहार अलबत्ता बंद कर सकती हूँ।
1: ओ, मगर बंद करने की कौन कहता है डार्लिंग, मेरा मतलब है कम करने का प्रस्ताव विचारणीय हो सकता है।
0: खैर, कोशिश करूंगी। अच्छा, आइटम नंबर 14 व 15 में कोई कटौती नहीं। पाउडर, क्रीम, सेंट आदि सौंदर्य प्रसाधन स्त्री के लिए अनिवार्य हैं, और आइटम 15 के अंतर्गत आकस्मिक आवश्यकता के लिए रुपए बचाना भी, कोई आपत्ति?
1: जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: अच्छा, आप ये बताइए, आपको जो 10-15 रुपए हाथ खर्च दिया जाता है, क्या उसके खर्च का मैं ब्यौरा पूछ सकती हूँ?
1: यही बस, कुछ किताबें, सिनेमा,
0: बीड़ी के टुर्रे, यारबाजी, यूं कहिए ना, फिजूल खर्ची की भी हद होती है श्रीमान। देखिए, इस प्रस्ताव का धरता से पालन होना चाहिए कि एक फिल्म जो हम दोनों देखते हैं, उसके अलावा आप अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक 2 फिल्में देखेंगे, बस।
1: सिर्फ 2?
0: हाँ, यहाँ भी आपके साथ उदारता बढ़ती जा रही है।
1: और देवी जी, ये हर इतवार को आप जो अंग्रेजी फिल्म देखती हैं?
0: मैंने कहा था ना, भी दफ्तर के साथियों का साथ देना एक मजबूरी है। जब वे पांचों देवियां यहाँ आ धमकती है, तब बताइए मैं क्या कहूँ। और तब आपसे भी तो इनकार करते नहीं बनता, क्योंकि हमारे साथ चलने के लिए तब आपके खुद के मुँह में पानी भर आता है।
1: लेकिन फिर भी आपने कभी हमारी इस दयनीय स्थिति पर रहम नहीं किया।
0: खैर, तो स्थिति इस प्रकार रही कि आइटम नंबर 2, 4, 6, 11, 12, 13 व 16 की कुछ मामूली कटौतियों से इस माह का घाटा पूरा हो जाता है।
1: इस स्वीकृति के साथ कि ये कटौतियां एकांगी हैं, फिर भी मान्य हैं।
0: जो भी है, परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आपको इनका पालन करते हुए गृहस्थी के प्रति उनकी श्रद्धा प्रकट करनी ही होगी।
1: अच्छा, आप भाई दीपे आइटम 7 और 14 पर क्या कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते
0: हैं? हाँ, अच्छा, पहले ये बताइए कि आपकी मित्र मंडली की मेरे प्रति क्या राय है?
1: अजी, लोग सिर धुनते हैं।
0: मैंने राय पूछी थी, ये नहीं पूछा था कि सिर धुनते हैं या रुई।
1: वही तो मैं बता रहा हूँ श्रीमती जी, कि लोग ये कहते हैं कि हे भगवान, यदि अगला जन्म होता तो हमें चाहे कानी, लूली, लंगड़ी, कैसी भी बीवी मिले, मगर मिले कमाऊ।
0: आज जब मैं सर समझ कर आपके साथ निकलती हूँ, तब
1: तब लोगों की नजर मेरे बजाय तुम पर टिकी रहती।
0: ये सच है ना?
1: जी हाँ, बिल्कुल सच।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे कारण तुम्हें मान मिलता है ना?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: तो फिर आइटम 7 में कटौती का अर्थ होगा कि मैं गंदी सलवट भरी साड़ियां पहनूं, और मेरे दफ्तर की अन्य लड़कियों के मुकाबले।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं, कभी नहीं। तुम्हारी साड़ियों आदि का ड्राई क्लीनिंग होना बहुत जरूरी है।
0: तुम कितने अच्छे हो ना।
1: तुम भी तो कितने अच्छे हो।
0: अच्छा, तो आइटम 14 के अंतर्गत मेरे सौंदर्य प्रसादनों में कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं क्या आप?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रख रहे।
0: अच्छा, तो इसका मतलब है मेरी तनख्वाह है 355 रुपए,
1: बिल्कुल ठीक,
0: और 7 रुपए हुए रद्दी के, कुल हुए 362 रुपए।

0: और कटौतियां करने पर खर्च हुआ 360 रुपए 80 पैसे।
1: वाह वाह, क्या बात कही है, मेरा बस चले
0: तो मुझे वित्त मंत्रालय बना दे। खैर, तो आज से इसी योजना के अनुसार काम करने की घोषणा की जाती है।
2: चलिए मंजूर।
0: कौन है?
3: जी जी।
0: अरे मधु, कब आए तुम?
3: अभी आए।
0: हाँ, खबर तक नहीं दी,
3: सोचा अचानक पहुँच कर दीदी को चौंका दूंगी। दीदी, जीजा जी कहाँ हैं?
0: अंदर गए हैं, अभी बुलाती हूँ, तब तक तू चल नाश्ता कर ले।
2: अरे भाई, कौन आ गया है?
0: देखो तो कौन आई है।
3: नमस्ते जीजा जी।
2: अरे नमस्ते। नमस्ते मधु, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक?
3: ठीक हूँ जीजा जी।
0: अरे मधु, यहाँ एक फ्राई किया हुआ अंडा पड़ा था, मेरे चूहे ले गए क्या? तेरे जीजा जी के लिए रखा था।
3: दीदी वो तो मैं खा गई, जीजा जी के लिए और बना दो, मैं भी एक और लूंगी।
2: बात यह मधु, अंडा एक ही आता है, वैसे मैं भी दो ही खाता था, और वो तुम्हारी दीदी ने आज ही से।
3: अरे वाह दीदी, जीजा जी कमाते नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुमने खाना भी ना तुला दो।
0: तू सोचती है, वो बात नहीं है मधु।
3: बात कुछ भी हो दीदी, खाने पीने में कटौती।
2: यही तो मैं कहता हूँ मधु।
3: पर देखो दीदी, कल मैं खुद जाकर 4 अंडे, 2 डबल रोटी और 2 टिकिया मक्खन लाऊंगी, समझी? जीजा जी, यहाँ पिक्चर कौन कौन सी चल रही
0: है? अरे सब ऐसी है, तेरे देखने लायक नहीं है।
3: ठीक है, जैसे भी है दीदी। अभी जब अपन ड्राई क्लीनर्स के कपड़े देने चलेंगे तो लौटते समय एडवांस टिकट ले आएंगे, क्यों जीजा जी?
2: तुम बिल्कुल चिंता मत करो मधु, सब ठीक हो जाएगा।
3: अच्छा दीदी, आप दोनों तय करो कि कौन सी पिक्चर चलनी है, मैं भी नहा के आई।
0: हो गई अपनी बचत योजना चौपट।
2: मधु कोई 10-20 कपड़े तो रोज धुलवाएगी,
0: और 10 दिन तक दुगने अंडे, डबल रोटी और सब्जी आएगी।
2: और ये जब जाएगी ना, तभी से सलवार कुर्ता भी भेंट करना।
0: हाय, 40 का घाटा था ही, 100 का हो जाएगा।
4: आज हवा महल में आप सुन रहे थे मनोहर वर्मा की लिखी नाटिका बजट एक कमाऊ बीवी का। निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर। आकाशवाणी जयपुर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए साधना सरगम और उदित नारायण की

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन हैं।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आइए सुने अगला गीत अलका याग्निक, उदित नारायण, अमित कुमार और साथियों की आवाजों में समीर के बोलों को संगीत से सवारा है विजू शाह ने। फिल्म का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं सुनिधि चौहान और करसन सरगतिया की आवाजों में। गीत लिखा है तेजपाल कौर ने, संगीतकार हैं अनु मलिक, फिल्म का नाम है फिजा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा है नितिन राय कवार ने, संगीत है संदीप चौटा का, फिल्म का नाम है मस्त।

इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स समुद्री

0: ट्रकों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी

0: प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशुराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ

0: बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए शमशाद बेगम की आवाज में। नगमा निगार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन और फिल्म का नाम है बहार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में अगला गीत। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत है जय देव का, फिल्म का नाम है मुझे जीने दो।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों कार्यक्रम का अगला गीत है गीता दत्त की आवाज में, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना मदन मोहन की, फिल्म का नाम है भाई भाई।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कहने गए खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: बारे में भी नहीं, बल्कि यहां बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।
1: आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के संग...

0: रहता मैं डट के रहता मैं आया है राजा
1: लोगो रे लोगो
0: राजा के संग संग
1: चुम लो
0: आया है राजा
1: लोगो रे लोगो
0: राजा के संग संग
1: चुम लो
2: वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8,500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।
0: वो तो बना

जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव-गांव शहर-शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे। और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहां वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने

लिया राजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैयाराजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैयाराजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैयाराजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैयाराजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कजू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिनथई किलन थे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्र। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

0: सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलियाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलियाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, क्या शोर से बजी है।

और फिर आई फिल्म शमिताब, जिसके गाने लिखे स्वानंद किरकिरे ने, और इस फिल्म में था ये दिलचस्प गाना अमिताभ बच्चन की आवाज में।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैया राजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार A.R. रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैया राजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने

इलैयाराजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

यहाँ आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजाविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्र वीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

पैलेस। चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाक, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है।

इलिया राजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलिया राजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिनी और युवान शंकर राजा। इलिया राजा के ये 3 बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलिया राजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है, और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलिया राजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहाँ तक कि अपने भाई को भी, इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलिया राजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है, और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलिया राजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलिया राजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैयाराजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैयाराजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहनलाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैयाराजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैयाराजा ने तमिल फिल्म पागल निलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिम्फनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल है।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बनाता है।

0: संगीतकार इलियाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दिल का सौदा है एक ऐसा सौदा जहाँ जो खोए वो पाता है और जो पाता है वो खोता भी है। इसमें जीत कर भी हार है और हारने वाले की भी जीत। इसकी है ऐसी रीत कि न यहाँ होता है मोल भाव न कोई नाप तौल। जनाब ये है दिल का शहर, यहाँ बदलते हैं मौसम हर पहर। धूप में खिलती है चांदनी और रात में बरसते हैं शोले। जैसा जैसा दिल कहे बस कुछ वैसा ही मौसम होले।

खोजती हैं ये नजरें जिसे दिल के बाजार में वो दिल जाने कहाँ गुम है। ढूंढूं कहाँ उसे, ये सितारे भी गुमसुम हैं। जलते हैं अरमानों के दिए, उम्मीदों की रोशनी में ही कहीं मिल जाओ तो क्या बात हो। दिन रात का ये सफर मिट जाए जो हाथों में तेरा हाथ हो। है दिल को बहारों का अरमान तेरे संग, मैं तुझसी बन जाऊं, रंग जाऊं तेरे रंग।

हार जीत का ये दुनियावी तिलिस्म हमें समझ न आया है। हमने तो खोकर दिल को अपने तुझे दिल के करीब पाया है। इस सौदे में लगा हमारा सब कुछ, पर कुछ भी ना गवाया है। जितना दिया पास से अपने, लाखों गुना वापस आया है। एक ओर दिल का सौदा हुआ खरा और दूसरी ओर निगाहों ने भी ठंडक पाई है। तेरे साथ जीवन की हर तन्हाई भी शहनाई है।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। दिल की सौदेबाजी में हमने पाया प्यार का रंग, दुनिया के भीड़ में मिला है एक हम कदम। तो मिल ही गया तो क्यों ना तय करें ये सफर अब साथ में ही, हाथों में हाथ थामे मिला लें कदम से कदम। कभी कलियां खिलें तो कभी गलियां मिलें, साथ है तेरा तो मुझे है अब क्या गम। देख ले साथी दिल की सौदेबाजी में, संभाल लेना जो जरा भी लड़खड़ाए हम।

0: ये पहली मुलाकातें, ये प्यार भरी बातें,
1: मिल गए दुनिया में दिन के सहारे।
2: इस दिल का क्या भरोसा, तेरा होकर भी तुझसे ही शर्माता है। कहते कहते अपनी कोई बात खुद ही चुप हो जाता है। कभी लगता है जैसे बरसों से हो तुम राजदार इसके, और अगले ही पल न जाने क्यों अपनी बातें तुमसे ही छुपाता है। छेड़ता है रागिनी कोई और झूम झूम जाता है, पाकर तुझे खोता है और खोकर तुझे पाता है। हर रोज तेरी एक नई झलक ही पाता है।

जिंदगी के सफर में चल रहे थे तन्हा ही हम, तुम मिले तो बदले मायने सफर के। इस साथ का दिल पे हुआ है असर ये कि अब तन्हाइयों में भी होती है तुमसे ही बातें, याद आती हैं वो मुलाकातें। जब फूलों की चादर पर चले थे हम साथ, यादों में ही थामती हूँ अब तेरा हाथ। तो हकीकत बनकर सामने नजर आते हो तुम, मेरे अफसानों को रंग जाते हो तुम।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
0: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
0: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि

अमरीका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।